0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: संभालींदा नवनि सूबनि बाबति फ़ैसिलो आवाम जो हूंदो। पीपल्स पार्टी आवाम सां गॾु आहे, सिंध विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सां आवाम ई गॾु न आहे। MQM जे दोस्तनि खे बि ठहराउ जी हिमायत करणु घुर्जे। मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली खुर्शीद चयो आहे त हुननि जो पुराणो मुतालबो रहियो आहे त नवनि सूबनि जे मामले ते बहस थियणु घुर्जे, पर हाणे पीपल्स पार्टी वारनि पाण बहस लाइ रिथ जमा कराई आहे। गवर्नर्स खे बहितर बणाइण लाइ इंतिज़ामी यूनिट्स ॾांहुं वञणो पवंदो। तहरीक इंसाफ़ जे मेंबर सजाद सुमरे बि नवनि सूबनि जी मुखालफ़त कंदे चयो आहे त पहिरियां आवाम जा मसला हल करे ॾेखारियो, पोइ सूबनि जी ॻाल्हि कयो। मौसमियात खाते पंजाब ऐं KPK में अॼु खां तेज़ बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियण जी अक थी करे छॾी। आवाम खे लैंडस्लाइडिंग खां मुहतात रहण जो मशवरो। मौसमियात खाते चयो आहे त सुभाणे खां 5 सेप्टेम्बर ताईं पंजाब ऐं KPK में तेज़ बरसातूं पवंदियूं, मथां इलाइक़नि में लैंडस्लाइडिंग जो बि ख़तरो आहे। कोड जी भरिसां लोड रक्षा वाह में किरण सबबु ॿुॾी वियल 4 ॿारनि मां 3 जो बि लाश हथ अची वियो आहे। 12 वरनि जे मीर मोहम्मद गोपांग जो 36 कलाकनि बाद मेहरान भरिसां लाश मिली वियो आहे। उन खां अॻु 13 सालनि जे जुनेद ऐं लाहौती गोपांग जो लाश मिलियो हो। 11 वरनि जे मुंतज़िर मेहदी गोपांग जी ॻोल्हा जारी आहे। नींगर मीर मोहम्मद गोपांग जो लाश पहुचण ते इलाइक़े में सोग छाइजी वियो आहे। आलिन अखियुनि सां बड़े मिटी माउ हवाले कयो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
3: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है, मुलाजमीन या रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स, जायदाद या कारोबार बनाना या फिर फर्जी अफराद के नाम इस्तेमाल करना। याद रखिए, कानून की नज़र में बेनामीदार और असल मालिक दोनों मुजरिम है। बेनामी कानून के।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इसराइल जो भी मुशाहिदो कयो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मकामी पैदावार सलाहियतनि ऐं टेक्निकल ने जिदत जो अज़म वरजायो।
2: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराचीअ दौरो जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। घरू वज़ीर इमीग्रेशन काउंटर्स ते बि कम कार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नकवी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादिल इंतज़ाम हुजणु घुरिजे। इमीग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुरिजे।

ईरान जी इजाज़त खां सवाइ को बि जहाज़ आबना हरमुज़ मां गुज़री न सघंदो। पासदार इनकलाब जो अमरीकी सदर जे आबना हरमुज़ खोलण वारे बयान ते रद अमल। पासदार इनकलाब मूजिबि अमरीका नाकामियूं लिकाइण लाइ कूड़ा बयान ॾेई रहियो आहे। ईरान ख़िलाफ़ जेसि ताईं अमरीकी फ़ौजी कारवायूं ख़तम न थींदियूं तेसि ताईं आबना हरमुज़ में मुदाख़लत बर्दाश्त न कंदियूं।

0: खां वधीक तेल जे ज़खीरनि ते कंट्रोल हासिल करे वरितो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वेनेज़ुएला सां दुनिया जी तारीख़ में तेल जो सभ खां वॾो मुआदो कयो आहे। हिन मुआदे सां वेनेज़ुएला खे वॾी कामयाबी ऐं खु़शहाली मिलंदी। अमेरिका ऐं वेनेज़ुएला में लाॻापा वधीक मज़बूत थींदा।
1: मौसमियात खाते पंजाब ऐं केपीके में अॼु खां तेज़ बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियण जी अक थी करे छॾी। अवाम खे लैंडस्लाइडिंग खां मुहतात रहण जो मशवरो। मौसमियात खाते चयो आहे त अॼु खां 5 सेप्टेम्बर ताईं पंजाब ऐं केपीके में तेज़ बरसातूं पवंदियूं। मथां इलाइक़नि में लैंडस्लाइडिंग जो बि ख़तरो आहे।
0: कोटड़ जी भरिसां मीरवा किनाल में ॿुॾी वियल चोथे ॿार जो लाश बेहथ। ॿ ॾींहं अॻु रक्षा हूंदो थियण सबबि चार नींगर मीरवा किनाल में ॿुॾी विया। 36 कलाकनि बाद ॿुॾी वियल ॿारनि वारनि जे मीरममा जो लाश बेहथ कयो वियो। नींगर जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो।
1: कुंडरी वेझो फसल जे भेल तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि 5 ॼणा मरी। ॻोठ लखानो रिंद में फसल जे भेल तां रिंद ऐं भील बिरादरी में झेड़ो थियो। झेड़े में कुहाड़ियूं ऐं लठियूं सबबि भेल बिरादरी जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मीनि खे तालके अस्पताल कुंडी नियो वियो। हमिलो कंदड़ फरार थी विया।

0: पाणीअ जो दॿाउ वधण सबबि सूरत आलगणतीअ जोगी पाणी अॼु तेज़ वहकिरे ऐं ज़मीन में खाद सबबि ॻोठ में क़ाइम स्कूल लुड़ी वियो। मुतासिर ॻोठाणनि जो हुकूमत खां बुरड़ा पतण वारे हंधि हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जो मुतालबो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: की स्किन केयर के लिए दुनिया भर में खवातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइजा ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल अज्जा आपकी स्किन को रखे हेल्थी, खूबसूरत और जवान। फाइजा ब्यूटी क्रीम।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

dance. Puro puro, choro puro, heli

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर मान जो सवाल होता असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन चौथी डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो 10 साल का घट आ ते अस रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ॾाढो सुठो
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आखिरत बर्दाश्त न कभी। अमेरिका वेंजुएला के 65 अरब बैरल का वधिक तेल के ज़खीरन ते कंट्रोल हासिल करे वरतो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वेंजुएला सां दुनिया के तारीख में तेल जो सब का वड़ो मुआहिदो कयो आहे। उन मुआहिदे से वेंजुएला के वरी कामयाबी ए खुशहाली मिलंदी। अमेरिका वेंजुएला में लागापा वधिक मजबूत थींदा। सिंध में HIV के वधंदड़ केसिस की शफाफ जांच लाए आजाद कमीशन जोड़ो वे। MQM के आमिर सदीकी ठहराव सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के फिलिका अस्पताल में सामू आयल HIV केसिस की जांच जो मुतालबो। लागापे अफसर के भी अहदे तां हटाने की घुर। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करने जो हुकुम। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर समेत समूरो मानुन की लिस्ट पेश करने की हिदायत। कमीशन गुजरे ढीं थियल जांच के लिखत में हुकुम जारी कर छो। अदालती कमीशन है मीर रजा जो सब का पे लाश दिसंदड़ नर्सरी मुलाजमन के भी नोटिस जारी किया वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार भी पेश किया वे। कोट डिजी भरसां मीरवा कैनाल में बुढ़ी वेल चौथे बार जो भी लाश हथ आयो है। 36 कलाक बाद बुढ़ी वेल 12 वरन के मीर मोहम्मद जो लाश भी हथ कर वो। बी अग रक्षा ऊंदो थे सबब चार नींगर मीरवा कैनाल में बुढ़ी वया हुआ। टिन नींगर जा लाश गुजरे ढीं मिलया हुआ। कराची की अदालत 8 साल के नींगरी हबीबा के गटर में किरी फोत थे केस जो फैसलो बुझा छो। कराची वार्ड बोर्ड के महीने अंदर नींगरी के वालदेन के 1.5 करोड़ रुपया मुआवजो अदा करण जो हुकुम। 2021 में 8 साल की नींगरी हबीबा ऑक्स बे के शेर मोहम्मद गोठ में खुलल गटर में किरी फोत थी वही हुई। मटियारी भरसा नायच ए खोसा बिरादरी के बिन धुरन में थियल झेड़े जो एक जख्मी फोत। झेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलिद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दिनो। खोसा नायच धुरन में मामूली गाल थियल झेड़े में 5 जणा जख्मी थे। कुंडरी वेझो फसल के भेल त बिन धुरन में झेड़ो कुआरियों लठू लगन सब 5 जणा जख्मी। गोट लखानोरन में फसल के भेल त रिंद भील बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो थो कुआरियों लठू सब भील बिरादरी जहा 5 जणा जख्मी थे। शादातपुर खां भिक्षा ताईं सूफिन जो सिंध इम्कानी विरांगे खिलाफ़ प्यादल मार्च शुरू। मांझी फ़कीर जी क़यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन ऐं शहरनि जो वॾे अंग में शिरकत। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध सूफिन ऐं वलियुनि जी सरज़मीन आहे। सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश केर बि क़बूल न कंदो। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालन के नर्सिंग ऐं पैरा मेडिकल स्टाफ पारा अस्पतालन के PPHI हवाले करण खिलाफ रैली। मुजाहिरन सिविल अस्पताल का प्रेस क्लब हैदराबाद तई प्यादल मार्च के एहतजाज कयो। मुजाहिरन चयो आहे त अस्पताल के PPHI हवाले करण वारो फैसलो कबूल न आहे। फैसलो वापस वरितो वञे।

के खिलाफ शहरन जो एहतियात मनशा आदमी को करने के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबो साइट एरिया थाने की हद अलाहाबाद कॉलोनी के रहवासन मनशा आदमी विक्री के खिलाफ एहतजाज किया। गुजारिन मौजूद पुलिस शिकायतन बावजूद मनशा फरोशन खिलाफ कार्रवाई न करे रही है। नओं डेरो भरसां कचे के इलाके में सिंधु दरिया जो पानी तेजी से जमीनों पाण लगो। बुढ़ा पतण वाले हंध पानी जो दबाव बढ़ने सबब सूरत हाल गणती जोगी पानी के तेज वेकरन ने जमीन में खाद सबब गोठ में कायम स्कूल लुड़ी वो मुतासिर गोठान जो हुकूमत का बुढ़ा पतण वाले हंध हिफाजती पाव वो मुतालबो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में टे जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
1: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में खवातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइजर ब्यूटी क्रीम इसमें शामिल अज्जा आपके
2: अक्सर
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असावट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नेमत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: Yo, peace on the dance.

0: कमर्शियल ब्रेक।
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूद।
2: इतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सचल की सर मस्त धरती
4: फातिये मेहरान।

तूफान का फील होता है, ये मुझे लगता है या फिर आपको भी ऐसा महसूस होता है, मुझे बताएं जरा थोड़ा सा, ताकि मैं इस चीज को समझ जाऊं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर आपकी हाँ भी आवाज ऐसी आती है कि ऐसा लगता है भाई सिद्रा जो है वो बात करे लेकिन साथ साथ तूफान भी चल रहा है पीछे। आप बताइएगा और इसी के साथ साथ एक और गाना हमारी लिस्ट में है तो वो भी जरा हम लगा लेते हैं जी लिस्ट में। ये गाना होने वाला है बलोची गाना और बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस गाने को भी सुनेंगे, फरमाइश है जी अखलाक भाई की, सो लेट्स एंजॉय।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया। एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है, साथ साथ हम एंजॉय करेंगे। ओके जी, टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं, यहाँ के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, बात जो है ना, ये आवाज जो आ रही है ये पंखे की आवाज। अगर मैं पंखा बंद करके बैठूंगी तो फिर बहुत गर्मी है, आप समझ सकते हैं, तो बस बर्दाश्त कर लीजिएगा सर। अच्छा, चूड़ियों जो सोनिया जो अज सोनी चूड़ियों पाई आई है।

गाना सुनेंगे, लेकिन आपके मैसेजेस हैं तो जरा वो भी थोड़े से रीड कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाईजान कहते हैं कि दादा वैसे यहाँ पता चलेगा कौन कितना कंजूस है। वो तो सही बात है। और ठीक है बस। चाचा खालिद, आपने टॉपिक का जवाब दिया, कहते इंसान बुनियादी तौर पर मुफाद परस्त है, सब चीजों पर अपनी मुफाद को अवलियत देता है, दैट्स व्हाई अपने लिए मुश्किल लगता है दूसरों को मशवरा मुफ्त। योर टॉपिक आंसर वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और अखलाक भाई जान कहते हैं कि आंसर जडहीं पंजा वेरी हुंदा त पोए असांजा मसला हल कोन थींदा, हर गाल में टंग अड़ाईंदा आहिनि। पंजा, हाँ जाई बुधा, ए विच में मेरी पंजा करे अची हुआ।

जो गाना एंजॉय करें और गाने के साथ साथ हम जरा जाने लगे न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, जल्दी का नाम मस्ती, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सरकार नामी लिखाण लाइ कूड़ा बयान ॾेई रहियो आहे। ईरान ख़िलाफ़ जेसि ताईं अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयूं ख़तम न थींदियूं तेसि ताईं आपन हर में मुदाख़लत बर्दाश्त न कबी। पीपल्स पार्टी पिम साने जी जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सेनेटर परवेज़ शाह ख़ान चयो आहे त पीपल्स साने जूं शाहिदियूं मटाइण जी कोशिश थी रही आहे। पिम्स खे 3 सालनि दौरान 22 अरब रुपया मिलिया आहिनि। रक़म किथे ख़र्च थी ऑडिट कराई वञे। पिम्स साने खे लिकाइण न ॾिनो वेंदो।
2: मतलब 5 साल की बच्ची उसके साथ दूसरा प्यार किया इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
1: केपीके जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदीअ जे हरीपुर में ज़्यादती बाद क़तल कयल मासूम आयत नूर जे घर आमद वालदेन सां रुख ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। सुहेल आफ़रीदी नीगरी आयत नूर जो ज़िक्र कंदे लुट लाड़े वेठो। आयत नूर जे वालिद खे मुकमल इंसाफ़ ॾियण जी ख़ातिरी बि कराई। सिंध में HIV जे वधंदड़ केस जी शफ़ाफ़ जांच लाइ आज़ाद कमीशन जोड़ी वञे। MPM जे आमिर सदीकी ठहराउ सिंध असेंबली में जमा कराए छॾियो। कराची जे वलिका इस्पताल में साम्हूं आयल HIV केसिस जी बि जांच जो मुतालबो। लाॻापियल आफ़िसरनि खे बि उहिदे तां हटाइण जी घुर कई वई। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम। केस सां जुड़ियल समूरनि आफ़िसरनि ऐं डॉक्टर समेत समूरनि माण्हुनि जी लिस्ट पेश करण जी हिदायत। कमीशन गुज़िरियल ॾींहं थियल जांच जो लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालती कमीशन चयो आहे त मीर रज़ा जो सभ खां पहिरीं लाश ॾिसंदड़ नर्सरी मुलाज़िमनि खे बि नोटिस जारी कयो वञे। पुलिस मोबाइल जे इंचार्ज ऐं अहलकारनि खे बि पेश कयो वञे। कोडी जी भरिसां मीरवा केनाल में ॿुॾी वियल चोथे ॿार जो लाश हथ 36 कलाकनि बाद ॿुॾी वियल 12 वरनि जे मीर मोहम्मद जो लाश हथ कयो वियो। 2 ॾींहं अॻु रक्षा उंदो थियण सबबि 4 नींगर मीरवा केनाल में ॿुॾी विया हुआ। 3 नींगरनि जा लाश गुज़िरियल ॾींहं मिलिया हुआ। कराची जी अदालत 3 सालनि जे नींगरी हबीबा जे गटर में किरी फोत थियण वारे केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। कराची वाटर बोर्ड खे 1 महीने अंदरि नींगरीअ जे वालदेन खे 1.5 करोड़ रुपया मुआवज़ो अदा करण जो हुकुम। 2021 में 8 सालनि जी नींगरी हबीबा हॉक्सबे जे शेर मोहम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वई हुई। मटियारी भरिसां नाइच ऐं खोसा बिरादरी जे 2 धुरियुनि में थियल झेड़े जो 1 ज़ख़्मी फोत। झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल मुबारक वालिद हमदो खोसो सिविल इस्पताल हैदराबाद में दम ॾेई छॾियो। खोसा ऐं नाइच धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां थियल झेड़े में 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया हुआ। कुंडरी वेझो फसल जे भेर तां 2 धुरियुनि में झेड़ो कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि 5 ॼणा ज़ख़्मी। घोट लखानो रिंद में फसल जे भेर तां रिंद ऐं भील बिरादरी जे 2 धुरियुनि में झेड़ो थियो। कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि भील बिरादरीअ जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया। शादतपुर खां बिरशा ताईं सूफ़ियुनि जो सिंध इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ प्यादल मार्च जारी। मांझी फ़क़ीर जी क़यादत में निकितल प्यादल मार्च में सूफ़ियुनि ऐं शहरनि जो वरी अॻु में शिरकत। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध सूफ़ियुनि ऐं वलियुनि जी सरज़मीन आहे। सिंध खे विरहाइण वारी साज़िश कवैर बि क़बूल न कंदो। नवीसर रोड में सिंध जी इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ क़ौम परस्त अॻवाणनि ऐं शहरनि जी रैली। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जी वहदत ते वार बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध हिकु आहे ऐं हमेशह हिकु रहंदो। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालनि जे नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल स्टाफ पारां अस्पतालनि खे PPHI हवाले करण ख़िलाफ़ रैली। मुज़ाहिरीन सिविल अस्पताल खां प्रेस क्लब हैदराबाद ताईं प्यादल मार्च करे एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन चयो आहे त अस्पतालनि खे PPHI हवाले करण वारो फ़ैसिलो क़बूल नाहे। फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। फेसगंज में बदमनी खिलाफ शहरन जो मेरान हाईवे ते धरणो। उकरी थाने जी हद में चोरी जा जवाबदार गिरफ्तार। खिलाफ करूंडी डिग्री कॉलेज वट टायर साड़े मेरान हाईवे ते धरणो वियो। मुजाहिरीन चयो आहे त घरन मां थियल चोरी वापसि कराए तालके में अमन अमान बहाल करायो वञे। सखर के दारुलमान में रहंदड़ औरतन ते हमलो करण के इल्ज़ाम हेठ केस दाखिल। दारुलमान इंचार्ज मुजसरा उलवी के फरियाद ते शहरीला मंगी गुनवा जतोई। अरूज मीरानी खिलाफ सी सेक्शन थाने ते केस दाखिल कयो वियो। कुछ ॾींहं अॻु पनाह वरतल औरतन सहूलतूं न मिलण खिलाफ़ दारुलमान जी छित ते चढ़ी एतराज कयो हो। नओं देरो भरिसां कचे जे इलाइक़े में सिंधु दरिया जो पाणी तेज़ीअ सां ज़मीनूं पाइण लॻो। ॻोड़ा पधण वारे हंधु पाणीअ जो दॿाउ वधण सबबि सूरत अलगणती चोगी। पाणीअ जे तेज़ वेकरनि ऐं ज़मीन में खाद सबबि ॻोठ में क़ाइम स्कूल लुड़ी वियो। मुतासिर ॻोठाणनि जो हुकूमत।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी। पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

रामी सिद्रा के साथ माधुरी मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। और जनाब हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो जिन लोगों ने अभी भी सुना है स्टार के या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। अच्छा जी, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार किया होगा ना, उन लोगों को जरा बताते हैं कि आज मैंने आप लोगों से सवाल क्या पूछा। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है आप लोगों से मैंने पूछा वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं कि इंसान दूसरों की प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो जल्दी दे देता है अगले इंसान को, लेकिन अपनी प्रॉब्लम का हल उससे क्यों नहीं जल्दी में मिलता। अपनी जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो क्यों इतना जो है वो परेशान हो जाता है और उसको अपने मसले हल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मुझे आज आप ये बताइए। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। ओके जी, आप मुझे 8881 पर ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमें सुन रहे हैं और साथ ही साथ फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें। क्या बातें आप लोगों के साथ बातें करेंगे और बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। कभी कभी मैं ऐसा होता है ना, यानी कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ना ऐसे वो जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं जैसे

बहुत सारे ऐसी जिंदगी के बारे में बातें होती हैं। वैसे तो देखा जाए जिंदगी बहुत अजीब है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम इंसान जो होते हैं ना, वो कितने खुदगर्ज होते हैं, कितने सेल्फिश होते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो बगैर किसी चीज के आते हैं, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आते। लेकिन ये चीज आपने नोटिस करी है कि हम हर चीज को हासिल करने के लिए कितना ज्यादा लड़ते हैं, रिश्ते खराब कर देते हैं, सारी चीजें इधर की उधर कर देते हैं, और जब हमें वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है, तब क्या होता है? हम अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो वही खाली हाथ चले जाते हैं, सारी चीजें वो सब कुछ ऐसी दुनिया में रह जाता है। तो इस चीज को नोटिस किया करें कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो ये आपका एक टेस्ट है, और इस टेस्ट को अगर आप सही तरीके से नहीं पूरा करेंगे तो फिर आप जाहिर सी बातें फेल हो जाएंगे। तो फेल मत होइए और अपनी टेस्ट को अच्छे से कीजिए, और इतना ज्यादा चीजों के पीछे मत भागा करें। जो आपके लिए है वो आपको बिल्कुल आकर मिलेगी। और ये भी एक चीज है कि इस दुनिया में, यानी कि पूरी इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो जीते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन देखिए अल्लाह पाक हर किसी को पाल रहा है, हर किसी को खिला रहा है। लेकिन एक इंसान ही है जिसके अंदर जो है ना, वो बहुत सारी चीजें जोड़ने की जो होती ना, वो एक आस होती है कि भाई मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। इंसान ही है जिनके अंदर ना, मतलब या चीज हूं बाबा असांखे सब कुछ करणो है, उनके सुबाने जी भी गणती हूंदी उनके कल जो भी प्रॉब्लम हूं तो बाबा कल ही सब थी वो सुबाने ही सब हासिल करणो है, पर हालांकि खबर ना तो सुबाने डिठो के आए। एकड़ो इंसानी आ जे की अंजन दे अंदर एतरी लालच पैदा थेल है, पर दिसो तमा हन पूरी दुनिया में, हन पूरी दुनिया जो निजाम पयो हले तो, जे की पखी आ हन, जे की जानवर आ, वे सब खाइन था, वे सब पीन था, पर एकड़ो इंसानी आ जे की एतरी टेंशन हुंदी आ है, एतरी परेशानी हुंदी आ है। हालांकि हर एक चीज के रिस्क जो कारण जो जिमो अल्लाह पाक खयो आ है। सो पानी जिंदगी में थोड़ो पाना के रिलैक्स रखो, परेशानन का थोड़ो दूर रहो, आई खुश रहने की कोशिश करो, बाकी एतरो हिर्स पैदा न करो पंहिंजे अंदर बाबा। सो हिकिड़ो गानो असांजी लिस्ट में आहे, तव्हां चवंदा मां मिंट में मतिलबु मौलाना थी वेंदी आहियां, सुठी ॻाल्हि आहे, पर चलो हिकिड़ो गानो असांजी लिस्ट में आहे, सो असां हिकिड़ो गानो बि इंजॉय कंदासीं। हीउ वारो ट्रेक आहे, ॿुधी करे इंजॉय कयूं था। तव्हां सां सां गॾु मौजूदु आहे बिल्कुलु तव्हांजा खोड़ सारा, ओ हेॾा सारा मैसेज जमा थी विया आहिनि, मैसेज पढ़ूं था, पर थोरो ई गानो इंजॉय करे वठूं, एतिरी बि तकड़ शाजी आहे।

हलो गानो जेको एंजॉय कयूं पिया असां वाकई भाग वारा आहियूं बिल्कुल बबन ॻाल्हि में को शक कोन्हे को पर हिते मां जा मैसेजिस आहिनि ई असांखे ज्वाइन कयो आहे मक़सूद मल्हा मेरापुर से कहते हेलो सिदरा मुस्कान आप हमें सुन रहे हैं जी लाहौर से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं शो सुन रहा हूँ और बहुत शुक्रिया जी आप मास्टर मंसूर का गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल आपको गाना सुनाया जाएगा आप हमारे साथ ही आपको वेलकम कहा जाता है अच्छा ये कहते हैं मुंह समझो मुझे मोबाइल जो स्पीकर फाटी पयो है पर मसलो तमा ना हो हाँ ये बिल्कुल तसली दियो असांखे टोपी अजरक पाईंदा अच्छा गोट मोमन तैयब थे वो कहा हबीबुल्ला थे वो भाई कहते हैं केड़ो भी फास्ट सॉन्ग बुधराय जो हाजिर हाजिर अच्छा ये हमारे साथ हैं जी आसिम कहते हैं आपी पोएट्री तेरी जात से कोई शिकवा नहीं चाहने वालों को अक्सर दुख ही मिलते हैं वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस और हमारे साथ हैं फहीम भाई कहते हैं दादा दोनों सॉन्ग समझ नहीं आए लेकिन हाँ वाइब अच्छी थी हम वाइब मैच करने वाले इंसान है वाइब जिते मिलंदी असा उते मिलंदासी महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रही थी वालेकुम अस्सलाम प्यारी सिदरा कुंज कैसी हो अच्छा कहते हैं आपका शो वेरी वेरी गुड है नाइस है आपकी सॉन्ग हमेशा अच्छे होते हैं और हमेशा खुश रहे नया कोई सॉन्ग सुनाए कारो वगो पर थैंक सो नाइस ऑफ यू कुंज ओके ओके आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं कारो वगो पर What? और तमाम यो मैसेज जो ना वही वराए तमाम जो शेयर थी वही वाई सो थैंक यू सो मच तमाम से सगड़ मौजूद आयो मोरो का महबूब अली

बस ही आखी के तां कारो जोड़ो भी कहीं कहीं ते ठहे बाबा डाडू वीआईपी गानो जको एंजॉय कयूं पया असि सगे ते मौजूद आए साजी दर्दे दिल केती अस्सलाम वालेकुम चंदा जाने कैसी हो वेलकम वेलकम मेरे को पता ही नहीं लगा शो चल रहा है हां जी शो चल रहा है वैसे कहती वाह वाह वाह वाह थैंक यू और कहती सही कहा सब सबके पास सब कुछ नहीं होता जो नहीं मिलता उसको हंसकर छोड़ दो और जो मिलता है उस पर शुक्र करो

हुआ है बिल्कुल जी, कोई शक को नहीं नगाल में। और यहाँ पर कश्मीर से अखलाक भाई के तेरा गाना न हलाए हाने दे मुंह भाभी चवेस थी तो वठी चूड़ियों वठी दे ना चूड़ियों केड़ियों वाले मांगियों आए सस्तियों तो मिलंदियों आए भाभी चूड़न का भी मांगिया छा बिला अच्छा ये मौजूद है। अच्छा जॾहिं तव्हां पैनल ते मैसेज कंदा कयो न त काइंडली पंहिंजो नालो लाज़मी लिखंदा कयो छो त हिते खोट सर मूंखे मैसेज मिली वेंदा आहिनि जंहिंजो नालो ई न आहे हूंदो त जॾहिं तव्हांजो नालो न आहे हूंदो न मैसेज में त पोइ वरी मां सोचींदी आहियां त इहो कंहिं मैसेज कयो आहे पोइ इएं थींदो आहे ज्यादातर त हुन मैसेज खे स्किप न करे छॾींदा आहियूं। सो तव्हां अगरि मैसेज लिखो था पैनल ते त हुन में पंहिंजो नालो लाज़मी लिखंदा कयो ठीकु आहे। सो मोहबतूं आहिनि तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो चाचा कहते हैं बेटा सिडो अवां त अॼुकल्ह कारो जोड़ो कोन था पायो नी न न न कारो जोड़ो कोन पाईंदा आहियो कारे खां थोरो परहेज़ कयो आहे।

गानो एंजॉय कयो गाने का पोई समिंदासी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरह उन का पोई जल्दी वापस तमारी मोटी नासी तमा करी ने मजे ते बैठा हो जो मा ओही मनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जीएफएम 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

0: It's 2:30 p.m. It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम इन गोबराई रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: ये सुना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ. पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं. बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं. इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है. आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे.
5: आप सुन रहे हैं
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

जब इस ऐप को देखेंगे, एक तो ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही, और प्ले स्टोर पर ना मिलने का रीजन सबसे बड़ा ये है इसका कि ये चाइनीज ऐप है। तो चाइना में जो है ना वो गूगल नहीं है, चाइना वाले जो है ना उनके पास गूगल नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्ले स्टोर है वो गूगल पर है, तो इसी वजह से आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप नहीं मिल रही। बाकी ये जो आपको बताया जा रहा है कि इतनी अर्निंग होगी, इतने आप पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब की छुट्टी होने वाली, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तसल्ली रखें, होले हो जाए, क्योंकि एक तो ये बात है कि उसके अंदर जो है ना ऐप के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया कि वो आप अगर चाइना में रहते हैं तभी आप पैसे कमा सकते हैं, इस चीज में कोई हर्ज नहीं है, इस चीज में कोई झूठ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप चाइना में नहीं है, किसी और मुल्क से आपका ताल्लुक है, तब आप इस ऐप पर कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो बस आप ऐसा नहीं कोई सीन यूट्यूब को टक्कर देने वाली, आज तक कोई ऐप खैर से बनी नहीं है। तो ये आज जो दावे चल रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तसल्ली रखें, सुकून से अपनी जिंदगी जिए, चाय का कप पीजिए और ये वाला गाना एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा गाना आपके लिए लगा लिया है। तो आइए मिलकर इस गाने को एंजॉय करते हैं।

खूबसूरत गाना जिसकी हमें फरमाइश हमारी प्यारी दर्द दिल ने कर दी थी, गाना डेडिकेट मुझे जा रहा है। और उन अलावा अलीजा भी असो प्रोग्राम बुधे पर अलीजा थैंक यू सो मच सोनी तवा से सगन मौजूद है। और हमारे साथी हक मौजूद सदा मौजूद मोलाली सलामत बदीन खान डॉक्टर हसीना सुमरो हमारे साथ कहती है डॉक्टर साहिबा डॉक्टर मरियम के शायद तवा सलाम दिना है। चौथा गानो तवा डेडिकेट कयो है पठान खान खोसो जे नाले। चले टाइम बचियो या तवा जो गानो मिलियो तो बिल्कुल तवा जे लाए गानो हलाइंदासी। और ये हमारे साथी मकसूद मला कहते हैं सबनी के कारा वगा पसंद हुंदा है ने मुखे वरी अच्छा वगा पसंद हुंदा है ने। और कहते हैं गाना चलाना कंजूसी नहीं करना। ओके जी ओके। और ये हमारे साथी आंसर एक दूसरे की रोटी हजम करनी होती है बुआ जी, असल बात बस यही है मशवरे ना दें तो खुद की रोटी हजम नहीं होती और दूसरों की रोटी हजम करने के लिए खुद को मशवरा लेना पड़ता है। अच्छा इसीलिए अपन खुद के लिए जल्दबाजी नहीं करते। क्या बात है, जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। ऐसे झट से हर किसी को मशवरे मत दिया करें मुफ्त वाले मशवरे। और साथ साथ जैसा अपने लिए सोचे वैसा ही बिल्कुल दूसरों के लिए भी सोचा करें। समान भाई हमारे साथ हैं और ये मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम सोनी नंदड़ी बहन सिद्रा साहिबा बदीन खान डॉक्टर कैप्टन मरियम हमारे साथ हैं। और आपका जी मैसेज जो है ना ये थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो चुका है तो आपको वेलकम कहा जाता है। थैंक यू आप हमारे साथ हैं। मेरे खास है राशिद अहमद हमारे साथ हैं। नारे जो अदी सिद्रा टॉपिक तवाजो जबरदस्त आई ऐं तवाजो शो भी नाइस आई। थैंक यू वेरी मच प्यारा भा, ताजो मैसेज एतरो ही मिलियो एतरो आ या वरी मिसिंग पार्ट थी वयो अल्लाह जाने तो। और ये हमारे साथ हैं। अच्छा किसी ने गाना बोला है नाम नहीं लिखा अपना तो नाम लिखा करें। और ये हमारे साथ हैं अली नवाज नूरपुर से कहते हैं तू परचण का इनकार कयो तो के परचण भी यार छो रोफ मक्सी जो गानो आए मां कोशिश क्या दी टाइम बची तो बिल्कुल ताजो गानो हलाए बैठू था। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं अली नवाज नूरपुर से आप हमारे साथ। और ये अखलाक भाई कहते हैं नवा इतनी महंगाई ना है जितनी मानो बचा चवाने महंगाई है तो कमाए ना किसने मना किया है। बात है। और ये हमारे साथ ही वरियाम अली जतोई कहते हैं प्यारी महफिल में सलाम था कहूँ अम्हा के शो बुधू था सफा वी आई पी आई। थैंक यू वेरी मच वरियाम। और ये फहीम भाई कहते दादा ऐसे लेक्चर घर वाले भी देते हैं अब आप भी देंगी बाबा कुछ ख्याल करें हम बेचारों का। जी जी बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ लेक्चर्स ना दूं लेकिन वो क्या है ना कि मेरे अंदर का मौलाना जरा जाग जाता है तो इसीलिए बस हो जाता है। और चाचा खालिद कहते हैं सैडी लास्ट लिंक। जी बिल्कुल। और ये हमने प्यारा गाना लगा लिया है क्या ही गाना है ये सुनकर इतना अच्छा लगता है ना कि बस क्या ही बताएं। तो गाना एंजॉय करेंगे और कुछ आपके मैसेजेस हैं जल्दी से मैं खत्म कर लूं क्योंकि हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है।

जी चाचा वो गाना डेडिकेट भी मुझे ही जा रहा था। देखें दर्दे दिल कितनी अच्छी अच्छी गाने निकाल कर आती है, कहती है गानो तवां के डेडिकेट आ तवां ते फिट करे तो। और कहती है चाचा अन्ना नयड़ी भी गाल कोने का। वैसे कड़ी कड़ी ईअं थींदो आहे मूड ते डिपेंड कंदो आहे त तव्हांखे या त तव्हां नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते बि मुंहुं ख़राब करे वेंदा आहियो या वरी ईअं थींदो आहे त वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं बि बर्दाश्त करे वेंदा आहियूं। इंसान जी हिकिड़ी इहा नेचर आहे, तबियत आहे, त हू या त वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं बि बर्दाश्त करे वेंदा या त सफ़ा नंढियुनि नंढियुनि चीज़ुनि ते नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते बि हुनजो मूड ख़राब थी वेंदो आहे, मुंहुं बणाए वेही रहंदो आहे। सो बसि बाबा इहा ज़िंदगी आहे ऐं तव्हांखे हिननि चीज़ुनि खे फेस करणो पवंदो, छो त जेके तव्हांजा प्यारा आहिनि उहे अगरि मुंहुं ठाहे वेही बि रहनि था त छा कजे भला, पर चवणो पवंदो।

अच्छा जी, बिल्कुल जी, ये है कि आप अच्छी अच्छी गाने सुनते हैं हमारे प्रोग्राम में। अखलाक भाई कहते हैं सिद्रा, नहीं ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा इसको आप उल्टा कीजिए, समझ रहे हैं? आप खुद ही बस उल्टा कीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ।

ये गाना हमारे प्रिय प्यारे चाचा को डेडिकेट जाता है, चाचा खालिद जोड़ेजो को। और बहुत शुक्रिया फहीम, आप इतने सारे आपने मैसेजेस कर दिए हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी मोहब्बतों का। और इसी तरह से लेते हैं जी यहाँ पर आप लोगों से इजाजत, फहीम से बता मुलाकात जी का मुझे थे पाई का पंच बजे वाले प्रोग्राम में थी दी। सो ज्वाइन करना आई पांचो ओ हिडो सरो ख्याल रखना, इतनी का गलती थी मुझे तो माजरत कही था, जो फीडबैक रही वाला जो गारो रही वाला सबने का माजरत कही था। सो मोकलानी ना है बाबू सिंह सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: इमिग्रेशन काउंटर से भी कम कार जो जायजो वरतो मौसम नकवे जे तो सिस्टम डाउन थे जी सूरत में मुतबादल इंतजाम होजन घुर्जे इमिग्रेशन जो अमल बंद न थन घुर्जे पीपल्स पार्टी पिमसाने जी जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो करे छो पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान चया तो पिमसाने जो शादी मिटाण की कोशिश थी रही है पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब रुपया मिलिया रकम किथे खर्च थी ऑडिट कराई वे पिमसाने के लिकाण न दिनों वो
2: उसके साथ सिर्फ प्यार किया इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा
1: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी की अरमपुर में ज्यादती बदकथ कल मासूम आयत नूर के अहमद घर वालदेन से दुख ए हमदर्दी इजहार सुहेल आफरीदी नींगरी आयत नूर जो जिक्र कंदे लुड़क लाड़े वेठो आयत नूर के वालद के मुकम्मल इंसाफ दियण की खातरी भी कराई सिंध में एचआईवी के वधंदड़ केसेस के छाप जवाब लाए आजाद कमीशन जोड़ी वे एमकेएम के आमिर सिद्दीकी 18 सिंध असेंबली में जमा कराए छो कराची के बलिका अस्पताल में सामू आयल एचआईवी केसेस भी जांच जो मुतालबो लागापियल ऑफिसर के उहदे तां हटाने की घुर कराची के वापारी मीर रज़ा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर डॉक्टर समेत समूरन मकान की हिदायत कमीशन गुजर डी थियल जांच जो लिखतनामो भी हुक्म जारी कर छो अदालती कमीशन चया तो मीर रजा जो सब का पे लाश दिसंदर नर्सरी मुलाजिम के भी नोटिस जारी कई वे पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार के भी पेश वे कोटड़ी की भरसा मीरवा किनाल में बुडी वेल चौथे बार जो लाश बेहद 36 कलाकन बाद बुडी वेल बार वरन के मीर मोहम्मद जो लाश बेहद वो बी अग रक्षा हूंदो थियण सबब चार नींगर मीरवा किनाल में बुडी वया नींगर जा लाश गुजर डी मिलिया हुआ कराची की अदालत 8 साल की नींगरी हबीबा के गटर में किरी पोथ वाले

0: ये सजो फैसलो बुधाए छो कराची वाटर बोर्ड के महीने अंदर नींगरी के वालदेन के 1.5 करोड़ रुपया मुआवजो अदा करने जो हुक्म। 2021 में 8 साल की नींगरी हबीबा आक्सबे के शेर महम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वही हुई। मटियारी भरसा पलीजाणी में नायच ए खोसा बिरादरी के बिंदरन में थियल जेड़े जो एक जख्मी फोत। जेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दिनों। खोसा ए नायच धुरन में मामूली गाल थियल जेड़े में 5 जणा जख्मी थिया हुआ। कुनरी वेझो फसल के भेल त बिंदरन में जेड़ो कुआड़ियों लठियों लगने सब 5 जणा जख्मी। गोठ लखनऊ रिंद में फसल के भेल त रिंद ए भील बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो थियो कुआड़ियों लठियों लगने सब भील बिरादरी जा 5 जणा जख्मी थिया। शहदादपुर का भिटशाह ताई सूपिन जे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आपको इंसाफ मिलेगा,
2: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी की हरिपुर में ज्यादती बद कतल कल मासूम आयत नूर के घर अहमद वालदेन से दुख ए हमदर्दी जो इजहार। सुहेल आफरीदी नींगरी आयत नूर जो जिक्र कंदे लुड़क लाड़े वेठो, आयत नूर के वालद के मुकम्मल इंसाफ दियण की खातरी भी कराई। सिंध में शायवी बदंदड़ केस के शफाफ जांच लाए आजाद कमीशन जोड़े वे, MQM के आमिर सिद्दीकी 18 सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के वेलिका अस्पताल में सामू आयल शायवी केस की भी जांच जो मुतालबो, लागापियल आफिसर के भी उहदे तां हटाने की घुर। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर डॉक्टर समेत समूरन मानन की फरस्त पेश करण की हिदायत। कमीशन गुजर डी थियल जांच जो लिखित जो हुक्मनामो जारी कर छो। अदालत कमीशन चाहता है मीर रजा जो सब का पे लाश दिसंद नर्सरी मुलाजिम के भी नोटिस जारी किया वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार के भी पेश किया वे। कोटड़ी की भरसा मीरवा केनाल में बुडी वेल चौथे बार जो लाश भी हथ 36 कलाक बाद बुडी वेल बारह वरें के मीर मोहम्मद जो लाश हथ कियो। बड़ी अग रक्षा उंदो थियण सबब चार नींगर मीरवा केनाल में बुडी वया, टिन नींगर जा लाश गुजरे डी मिलिया हुआ। मटियारी भरसा पलीजाणी में नाय चे खोसा बिरादरी के बिन धिरन में थियल जेड़े जो एक जख्मी फोत, जेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम डेई छो। खोसा ए नायज धुरन में मामूली गाल थियल जेड़े में 5 जणा जख्मी थिया। कुनरी वेझो फसल के भेल तिन धुरन में जेड़ो कुआड़ी लठियो लगण सब 5 जणा जख्मी। गोठ लखनऊ रिंद में फसल के भेल भील बिरादरी ए रिंद बिरादरी धुरन में जेड़ो थी पियो, जेड़े दौरान लठियो कुआड़ी लगण सब भील बिरादरी 5 जणा जख्मी थिया। शहदादपुर का भिटशाह तई सूफिन जो सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ प्यादल मार्च, मांझी फकीर की क्यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन शहर जो वो अंग शरीक अगवाण तो सिंध सूफिन वलियन की सरजमीन है, सिंध के विरायण वाली साजिश केर भी कबूल न कंदो। नबी सरोड में भी सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ कौमपरस अगवाण ने शहर की रैली अगवाण सिंध के वहदत से वार बर्दाश्त न कंदी, सिंध एक रही। हैदराबाद में सरकारी अस्पताल के नर्सिंग ए पैरामेडिकल स्टाफ पारा अस्पताल के PPA शाय वाले करण खिलाफ रैली, मुजाहरीन सिविल अस्पताल का प्रेस क्लब हैदराबाद में प्यादल मार्च कर एहतजाज किया। मुजाहरीन तो अस्पताल के PPA शाय वाले करण वो फैसलो कबूल न है, फैसलो वापस वरतो वे। फैजगंज में बदमनी खिलाफ शहर जो मेराण हाईवे से धरणो, अकरी थाने के हद में चोरन जा जवाबदार गिरफ्तार न थियण खिलाफ करूंडी डिग्री कॉलेज टायर साड़े मेराण हाईवे से धरणो हयो वो। मुजाहरीन चयो तो घर में थियल चोरी वापस कराए तालुके में अमन अमान बहाल कराए वे। घोटकी में बारन की खर्ची घुरण ता मुड़स पारा मुबैना तौर कार इल्जाम हेठ नारी के कतल करण की कोशिश, नारी पीर समेत अदालत पहुंची वही। नारी चवण है तो मुड़स नजीर चाचड़ खर्च न डी हो, हक घुरण से मार कुट कर घर कड़ी छो है, पटिशन दाखिल करण ता मुड़स कार इल्जाम हेठ कतल करण चाहे तो। सागड़ भरसा नौजवान शेरजान मरी के कत्ल केस जा ब जवाबदार गिरफ्तार, 5 डी के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। पुलिस चक नंबर 32 में कार्रवाई कर शहजादो उर्फ दादू ए इब्राहिम मरी के गिरफ्तार कर। पुलिस को चवण है तो जांच दौरान बिन्हीं जवाबदार शेरजान मरी के कत्ल को इतराफ़ किया है। ठुल में पुलिस अहलकार मंजूर बबरानी के 3 डी का गुमशुदगी खिलाफ वारसन जो एहतजाज, वारसन स्टेशन रोड से एहतजाज कर धरणो है। वारसन जो चवण है तो पुलिस अहलकार मंजूर बबरानी 3 डी का गुम है, का खबर न है, वारस मंजूर बबरानी की हयाती खतरो है, गोल्हा मदद कई वे।
3: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा, रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
4: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत। अर्जेंट ब्यूटी क्रीम
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मनसूबो नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज आपघाती हमले लाए तैयार कयल नंढी उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निंगरनि जा पाबंदी, मड़ियल तंज़ीम BLA बाबति छिरकाईंदड़ इंकिशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर ज़िया लांगो चयो आहे त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तमु करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो। 40 ॾींहनि ताईं खेनि बंदि रखी आपघाती हमले लाइ तयारु कयो वियो। निंगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कारवायूं जारी आहिनि। दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराचीअ जो दौरो। जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई जी हिदायत। घरू वज़ीर इमिग्रेशन काउंटर्स ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादल इंतिज़ाम हुजणु घुरिजे। इमिग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुरिजे।

0: अपने 5 साल की बच्ची को उसके साथ दूसरा प्यार किया।
1: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: मार्शल मकामी तौर ते तैयार कयल जदीद हथियारनि जी टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मकामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो अज़म वरचायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंजीम BLA जो दहशतगर्दीअ वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सिस आपघाती हमले लाइ तयार कयल नंढे उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निंगरनि जा पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA बाबति छिरकाईंदड़ इंकिशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर ज़िया लांगो चयो त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तमु करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 वरनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो। 40 ॾींहनि ताईं खेनि बंदि रखी आपघाती हमले लाइ तयारु कयो वियो। निंगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कारवायूं जारी आहिनि। दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो। जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई जी हिदायत। घरू वज़ीर इमिग्रेशन काउंटर्स ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादल इंतिज़ाम हुजणु घुरिजे। इमिग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुरिजे। आई वर्क फॉर सिंध जे नौजवाननि लाइ हिकु मुकमल डिजिटल केरियर इकोसिस्टम बणिजी चुको आहे, जिते नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा, जदीद कोर्स ऐं मुख़्तलिफ़ सहूलियतूं फराहम कयूं पियूं वञनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त आई वर्क फॉर सिंध ते हेल ताईं 4,45,000 खां वधीक नौकरियुनि जूं दरख़्वास्तूं गॾु कयूं वियूं आहिनि। सिंध हुकूमत जो मक़सदु नौजवाननि खे रुॻो नौकरी ॻोल्हींदड़ न पर नौकरीअ लाइ तयारु करणु आहे।
1: मतलब 5 साल की बच्ची उसके साथ सिर्फ प्यार किया।
2: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
0: खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदीअ जी हरीपुर में ज़ियाती बाद क़तल कयल मासूम आयत नूर जे घर आमन। वालदीन सां ॾुख ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। सोहेल आफरीदी निंगरी आयत नूर जो ज़िक्र कंदे लुड़क लाड़े वेठो। आयत नूर जे वालद खे मुकमल इंसाफ़ ॾियारण जी ख़ातिरी बि कराए छॾी। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह नवनि सूबनि ते बहस वारी रिथ वापसि वठी वाज़े ठहराउ मंज़ूर करण जो मुतालबो करे छॾियो। अयाज़ लतीफ़ पली जो चयो आहे त सिंध खे भित सां न लॻायो वञे। सिंध जे विरहाङे बाबति बहस न थियणु घुरिजे। सिंध असेंबलीअ मां सिंध जी वहदत ऐं सालमियत बाबति वाज़े ठहराउ मंज़ूरु कयो वञे।

शहदादपुर का बिटशा तई सूफिन जो सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ प्यादल मार्च जारी। सूफी रागी मांझी फकीर की क्यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन शहर जो वो अंग शरीक। अगवान सिंध सूफिन वलिन की सरजमीन है, सिंध के विरहण वाली साजिश केर भी कबूल न कद। नबीसर रोड में भी सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ कौमपरस्त अगवान शहर की रैली। अगवान सिंध की वहदत वार बर्दाश्त न कंदी, सिंध एक है हमेशा एक रही। हैदराबाद में सरकारी अस्पताल की नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ पारा अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करने खिलाफ रैली। मुजाहरीन सिविल अस्पताल का प्रेस क्लब हैदराबाद से प्यादल मार्च कर एहतजाज कर। मुजाहरीन जो चवण हो तो अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करने वो फैसलो कबूल ना है, फैसलो वापस वरतो वे। कोटकी की आंदल सुंदरानी थाने के हद में गोठाने की तजलील करने वाली वीडियो वायरल थे बाद एसएचओ समेत टे अहलकार मुअतल।

औंदेरो वेझो कच्छ जे इलाइक़े में सिंधु दरिया जो पाणी तेज़ीअ सां ज़मीनूं पाइण लॻो। बुरड़ा पतण वारे हंधि पाणीअ जो दॿाउ वधण सबबि सूरतहाल घणती जोगी। पाणी जे तेज़ वहिकिरे ऐं ज़मीन में खाद सबबि ॻोठ में क़ाइम स्कूल लुढ़ी वियो। मुतासिर ॻोठाणनि जो हुकूमत खां बुरड़ा पतण वारे हंधि हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जो मुतालबो।

नेपाल में आयल बोड के नतीजे में फौतन जो अंग वधी 616 थी वयो 2000 का वधीक मानू अञा भी गुम तिब्बत में भी 7 जणन जे फौत थियण जी तस्दीक 554 बदस्तूर गुम भारत में नेपाल में 320 भारतीय शहरन जे गुम होण जी तस्दीक करे छडी नेपाली अख्तियारन मूजिब गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: और आ गया भाई मजर निकल।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोशल मीडिया यूज करें उनमें को जी एड्स यो चन के सही असा ऑनलाइन गेम्स सा खेडू अवा भी के ऑनलाइन गेम डाउनलोड कयो हो ऑनलाइन गेम जे नाले सा अवा जो डेटा ता कलेक्ट ता कर ता जो एनआईसी एनआईसी एसईओ ता जी एनआईसी जो डेटा अच ता सडी उन नॉट डेटा अच थी ने तो डेटा कंप्रोमाइज थी ने तो डेटा जडी माल ता कंप्रोमाइज थी ने तो मा अवा के वही ता जी कंटेंशियल सा के रिकॉल तक के सही ता जा एक कंटेंशियल दिन अवा जो पार्सल आयो आ मा अवा जे घर बाहर बिठो हाने जदी अगर मा ता जो पार्सल खड़ी आयो आ चाहे टीसीएस आ चाहे लिपर्ड आ अगर मा ता के रिसीव न तो कराया तो हन में एक ऑप्शन आ
1: रिटर्न
0: करण हो अमा के फोन कर चंदा ता पासवर्ड बुदा त हे असन जी सोसाइटी में हन माल ओडो अहम आई बी कल मान के बैंकर सी कर कॉल ता करण
1: जी असर बैंकर्स थी करे एज वेल एज ता गाल के ही के का भी कोरियर सर्विस जे थ्रू जे के त रिप्रेजेंटेटिव पान जो बुधाए करे असा के कॉल कन था आई फिशिंग में सर ही जे की ऑनलाइन अगर असा सोशल मीडिया जा कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज के प्यार जस्ट लाइक फेसबुक तो उते कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वारा जे के वेबसाइट्स अची विंदो जे के फेक हुंदियो एन जे के तकरीबन 80-90% डिस्काउंट दे रिया ऑनलाइन जस्ट इन 10% दा पे कयो आई प्री जे के पेमेंट हुंदिया अच्छा या भी फिशिंग में पई अचे
0: ये भी फिशिंग में थी अचे
1: अच्छा
0: के अगर दिठो वने तो स्पूफिंग भी हिकड़ी इन टर्मिनोलॉजी आ के मां हिकड़ी फेक आए वेबसाइट ठाई करे स्पूफिंग कया तो उन जी भी सजा 3 साल है उन में मां यकीन तो डियारा के अगले के बिलीव कराणो आ जे मां अवा के बिलीव कराया के मां वट हिकड़ी एड़ी स्कीम आ जे में हेतरा पैसा ता डबल ता थिन ता वरी उन के ऑनलाइन के फॉलो करयो ता वरी छाय असा हिकड़ी कंटेंट्स ठायो ता अज जो जको डिजिटल दौर आ उन में अवा दिसो के जिया असाजी ए आई आ
1: जी हां जी
0: हां मां हते बैठा हूं असा हाने अगर ए आई जो नेगेटिव यूज कयूं असा बैकग्राउंड चेंज कर लिखूं असा के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जे हेठो असा जो इंटरव्यू कंडक्ट हो करे छदा त मानू नेगेटिव शयूं यूज करे उन के यूज करे मानू जा डेटा कलेक्ट करे मानू के इजी टारगेट करन ता जेके असा चो सा साइबर क्राइम
1: ओके
0: डिजिटल क्राइम is called cyber
1: crime sir he nowadays ta riso pya ta lai asan je colleagues abi je ken whatsapp accounts hack thyan ai unan kha po different tarike sa unan je whatsapp je account ta message achan pya ta payment ji zarurat hai asan ke payment moklyo ai lai janan payment mokle bhi chadiya ia spoofing kiye pai thi
0: sir asal mein pehri gal ta asan ke paan ke paan save karan je lai digitalize pakistan mein asan ke double authentication karan khape panje fe asan jo ko whatsapp un mein ek option a authentication double wo account less je ko bio hundo a simple whatsapp wo compromise thindo a ai hiyo tade thindo a jadi mal awa intentionally jane wane na magar ke galti sa ke ta otp dei chadyo je ko manu tan mokle to un otp jo yo hundo a he je ke frauds karan ta manu o tan je number te kedo number ta moklan otp je na otp means once time password wo bas ek dafo use thi to sake un ko use na to se sake jadi wo ta otp panjo agle ke dei ta chadyo o tan ji access ta karan tan je whatsapp te tan jo whatsapp chodo tan use kanda sabin zamane ke khabar se babar जो नंबर आ मुख्य अगर रात एड़ो मैसेज जे बाबर साहब आज मोसा मिलियो रात जे तो के यार मां हॉस्पिटल आ
1: इमरजेंसी में आया जी
0: मां बिल्कुल आवां जी मदद करन मां बिना सोचे करे करन त उने करे यो तां जो जको कॉम्प्रोमाइज थे व्हाट्सएप आए उन सा छाए होन तां सबिन कॉन्टेक्स्ट के मैसेजेस सा करन के मां इमरजेंसी में आ मां हत्या मां होत्या हाणे एस एस पी लेवल जे माण्हुनि जो अगरि जा जे डॉक्टर जेके इन्हनि जा बि थिया त बेसिकली एन सी सी आई आहे हिकिड़ो नओं इदारो आहे पहिरियों एफ आई ए हूंदो साइबर क्राइम विंग हूंदी एफ आई ए में उनखे एबोलिश करे उनखे सॼो कन्वर्ट कयो वियो एन सी सी आई में
1: ऐं
0: जेके बि केस साइबर जा हलनि पिया एफ आई ए में उहे सॼा ट्रांसफर थी विया एन सी सी आई में त हाणे एन सी सी आई हिकिड़ो इदारो आहे अगरि अहिड़ी शइ थिए थी ऑनलाइन पोर्टल आहे देन एंड देर तव्हां कंप्लेन कयो ऐं ईअं ई तव्हांजी बैंक्स जो बि इशू इहो ई थो थिए की तव्हांखे वंस टाइम पासवर्ड ओ टी पी मोकिलनि था उहो कंप्रोमाइज़ थियो थिए माण्हुनि जा रिसेंटली माण्हुनि जे लखे रुपया अकाउंटनि मां अव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां जिते असां डिजिटल पाकिस्तान जी ॻाल्हि था कयूं हे जेके रोडनि रस्तनि ते सिमियूं था माण्हू विकिणनि सिमियूं बंदि करायो हो तव्हांजी ऑथेंटिकेशन बाए बायोमेट्रिक था वठनि तव्हांजी सॼी ऑथेंटिकेशन तव्हांजे हिकिड़े अंगूठे जे निशान ते तव्हांजो सॼो डेटा आहे तव्हांजो शनाख्ती कार्ड हुन ते आहे तव्हांजो ऑनलाइन अकाउंट हुन ते आहे तव्हांजी हर शइ हुन ते आहे जॾहिं हो असां रोड रस्तनि ते अगरि इन्हनि सिमनि वारनि खां सिम था परचेस कयूं पर हुन वटि तव्हांजो डेटा हले वियो हो तो डिजिटल क्राइम करे थो सघे त इन करे मां वरी सभिनि माण्हुनि खे इहो चवंदुमि की

0: तव्हां खे अगरि सिम जी ज़रूरत आहे त तव्हां कोशिश कयो कि फ्रेंचाइज़र वटि वञो।
1: फ्रेंचाइज़र सर, बिल्कुलु तव्हां इहा सुठी ॻाल्हि कई, पर छा आहे त फ्रेंचाइज़र हाणे क्लोज़ थी थींदियूं आहिनि, ही जेके आहिनि रोड ते हिननि जूं एक्टिविटीज़ आहिनि। हिन ते इहो असां माण्हुनि खे सजेस्ट तव्हां करे कयो त बहितर आहे, त अगरि काई बि इंफॉर्मेशन हू ॾियनि था पिया त उनजी जेके आहे त सही तरीक़े सां केयर करनि, केयरफुल रहनि। ईअं आहे सर, छाकाणि त अगरि बायोमेट्रिक वठनि था पिया पोइ अक्सर इहो बि बहानो कयो वेंदो आहे त सिस्टम बिज़ी आहे
0: जी,
1: ऐं जॾहिं हू हलिया था वञनि उहा सिम एक्टिव पई थी वञे बाए चांस, पोइ उनजो मिसयूज़ थी पियो सघे। ईअं न सर?
0: सर, इहो कराची में
1: जी जी
0: मीन माइल ईअं हिकिड़े माण्हू जो कयनि की हुनजो बायोमेट्रिक वरितनि, हुनखे चयनि की तव्हांजो न आयो आहे
1: जी जी,
0: तव्हां बायोमेट्रिक हिते न ॿिए खे हंधि। मीन माइल हुनजे पोयां हुनजी हिकिड़ी ॿी सिम कढियनि, ऐं हुन सिम जॾहिं मां तव्हांजी हिकिड़ी सिम ॿी कढंदमि न,
1: ऑटोमेटिकली
0: जेकी तव्हांजी सिम तव्हांजी मोबाइल में हले थी उहा बंदि थी वेंदी, तव्हांजी सिम मोड़े अचे, ऐं उन सिम ते तव्हांजी सिम ते बैंक एक्टिव आहे। मां बैंक खे लिखंदमि मुंहिंजो पासवर्ड गुम थी वियो आहे, ऑफिशियल नंबर आहे, ॻाल्हाईंदमि न, उन ई नंबर सां कंदमि, बैंक जो मूंखे एक्सेस मिली थो वञे। इन खे चइबो आहे डेटा ब्रीच।
1: ओके,
0: बेसिकली बैंक जे लाइ असां डेटा रखियो आहे त NIC आहे, नादरा जो
1: आहे,
0: देन आफ्टर नादरा देर इज अनदर वेरीफिकेशन, ते असां हुन जी शनाख्ती कार्ड जी वेरीफिकेशन करे पोइ हुनजो सिम ॾिसूं, सिम खां पोइ असां हुनजो थंब इम्प्रेशन था ॾिसूं। हे जॾहिं सॼियूं ब्रीचिस थियनि थियूं तॾहिं हू सक्सेसफुली
1: नालो ॿुधाईंदा एड्रेस ॿुधाईंदा आहिनि, इन्फॉर्मेशन कीअं थी पुॼे, किथां पिया खणनि, किथे असांजी ग़लतियूं आहिनि जिते असांजो डेटा उते करे पिया छॾियूं, इनपुट कयूं पिया, ऐं उतां उहे इन्फॉर्मेशन इज़ीली खणी उहा फिशिंग कनि था पिया।
0: सर, असल में असां वटि हिकिड़ो ॾिसो गुरबत जो हिकिड़ो सॼे पाकिस्तान में कंहिंखां लिकियलु आहे, सॼे पाकिस्तान में असां लाइ इशू आहे। असांजा जेके कॉल सेंटर्स आहिनि, असांजो सॼो डेटा हुननि वटि आहे, उहो छा आहे उन कॉल सेंटर्स खे आहे असांजा बैंक लिंक्ड इन, बैंकिंग जा सॼा, जीअं तव्हां हिन महिल SBL खे फ़ोन करे पंहिंजे ATM जी चोरी जी ॻाल्हि था कयो, त हिन महिल SBL जी का बैंक खुलियल न आहे, हेड ऑफिस में कुझु माण्हू वेठा हूंदा आहिनि, मगर हे यूज़ कंदा आहिनि कॉल सेंटर्स खे, त कॉल सेंटर्स में जेके माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे एक्सेस मिलियल आहे की तव्हांजो शनाख्ती कार्ड ॾिसी करे तव्हांखे तव्हां बैंक अकाउंट ॿुधाए था सघनि, तव्हांखे बैलेंस था ॿुधाए सघनि, त उहे माण्हू नालो बि आहे ईज़ी टारगेट थींदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जी पंहिंजी का मीन वाइल का ग़लती आहे या कुझु बि आहे, जॾहिं उहो कंप्रोमाइज़ कनि त तव्हांजो मुंहिंजो हिकिड़ो प्रिशियस डेटा कंप्रोमाइज़ थो थिए, त इन करे असांजो सॼो डेटा इन्हनि नंढी नंढी ॻाल्हियुनि जे करे लीक थो थिए, जेके असां
1: पंहिंजो पाण डाउन पई थी वञे।
0: उहो हिकिड़ो वे आहे तव्हांखां तव्हांजी डेटा
1: डेटा वठण जो, एग्जैक्टली
0: मेन शइ आहे बाबर साहब, हिन दौर में छोड़ो तव्हांजी डेटा असांखे सिक्योर करणी आहे ऐं उन ई डेटा जे मथां कमु करिणो आहे। हेसि ताईं तव्हां ॾिसो पहिरियों फेसबुक में इलाही शयूं, मां ॿिए जाइनि ते नथा हलूं, असां फेसबुक ते था ॻाल्हायूं, फेसबुक में इहो कॉमन हूंदो बिना के ईमेल ID जे करे फेसबुक जी ID
1: ठही वेंदी हुई जी, हाणे थोरो प्राइवेसी लॻी वई आहे,
0: ऐं मोबाइल कोड थो अचे, ऐं ॿार वटि त मोबाइल ॾिसो, ॿार वटि मुंहिंजो मोबाइल थी सघे थो, ॿार जी पंहिंजी मोबाइल जी आइडेंटिटी त न आहे, जेकी हुन वटि सिम हूंदी हुन ते मैसेज ईंदो, वेरीफिकेशन जो मैसेज थो अचे की उहो ई माण्हू आहे। त आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान में डिजिटलाइज़ेशन जी तरफ़ां ऐं सिक्योरिटी जी तरफ़ असां वञूं था, मगर अञा बि असांखे ज़रूरत आहे पाण खे आवाम में जेसि ताईं सेल्फ अवेयरनेस न ईंदी
1: तेसि
0: ताईं इहे शयूं कंप्रोमाइज़ थींदियूं।
1: बिल्कुलु सर, तव्हां सही पिया थियो, सोशल मीडिया जी ॻाल्हि अची वई, अगरि त टॉपिक असांजो थोरो मुंहिंजी तरफ़ हिन तरफ़ फॉल्स इंफॉर्मेशन जी तरफ़ ध्यानु हलियो वियो। अवां ॾिसो पिया त अॼुकल्ह नॉवडेस कुझु अहिड़ी फॉल्स इंफॉर्मेशन आहे जेका बिना दस्तीक जेका आहे न उहा पोस्ट कई पई वञे ऐं उहा पई शेयर पई थिए, इनखे कीअं पिया ॾिसो ऐं इन एक्ट में इनजी जेका आहे त कहिड़ी सज़ा थी सघे थी, ऐं असांजे जेके व्यूअर्स आहिनि उनखे कीअं बचणु घुरिजे का बि फॉल्स इंफॉर्मेशन खे स्प्रेड करण खां।
0: सर ॾिसो, पीका एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट करे हिकिड़ो सेक्शन इंसर्ट कयो, सेक्शन 25, उनमें 25A में इहो लिखियो वियो की फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करण बि कानून जुर्म आहे। हाणे ॾिसो, माण्हू अवां बि फेसबुक यूस था कयो, मां बि कयां थो, अमीर खां अमीर माण्हू बि करे थो, रेडी वारो बि करे थो, पाबंदी न आहे। हाणे मसलो इहो आहे, फेसबुक हिकिड़ो ग्लोबल विलेज आहे, जेके लंडन वारो बि ॾिसे थो, अवां बि ॾिसो था। रिसेंटली इस्लामाबाद में एक वाक्य थो पिम्स जो 15 मासूम बार सड़ी पा पर मुस्तफा कमाल जो इन माल मिनिस्टर आ उनकी 2006 की वीडियो हलाए करे मानू चिंता के हाँ साई हे
1: इन साल लिंक पई कई वने
0: जी जी जी मुस्तफा कमाल मानू सा हे इशू तो ये गलत आ एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करण भी कानून जुर्म ता तहकीक त कयो मानू बदकिस्मत या मानू दिसो कुछ अगर को गलती सा के मानू जी हली तो ने के फलाणो मानू मरी हो आ असा उन जी असा जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करण को बजाए असा
1: शेयर ता कयो जी हां
0: फेसबुक भी एकड़ो कानूनन मानू के समझण खपे तहां जी फेसबुक आईडी तहां जो फेसबुक जो जको सजो सिस्टम आ ता एकड़ी एंटिटी आयो कानून जी नजर में तहां जी आईडी जा जिम्मेदार अवा हो अवा अगर का गलत छे शेयर ता कयो अवा जे खिलाफ कानूनी कार्रवाई थी वेंदी
1: सही सर
0: जी भी सजा 3 साल
1: हाँ सर यो मतलब दैट मीन तो जेका भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आ बिना के तस्दीक जे मानु शेयर न करे इवन केनी पोस्ट के भी जेको आदे कर वो शेयर करे पे तो वो भी इन्वॉल्व तो थी वने
0: सर असाट छ असाट साफ इनको वधिक असा के साफ थी ने शौक
1: हर को थी है बिल्कुल सही
0: पे तो इन मानु कोशिश करे दिसो साफत जो मानु को असा सोसाइटी में
1: जी जी
0: बडो को किरदार आ साफ
1: बिल्कुल
0: साफ इन हजरत पानी जानन जा नजर आ भी नजराना भी दिना ने मुल्क में इलाही शियो आयो मगर पो भी तहकीक करे मानु तहकीक करे पो ने सोर्स चाहिए ना इंफॉर्मेशन जो तो हर शे के पेरों ता तहकीक कयो पो शेयर कयो इन यो मतलब ना के हेठो एको बटन लगल आ शेयर रिसीव्ड एंड शेयर वाली पॉलिसी असा पाकिस्तान लाई नुकसान दे आ असा जे लाई ना असा मुल्क लाई नुकसान दे असा हर वो नेगेटिव शे शेयर करण लाई तैयार हूं जिन जो इंपैक्ट पूरी सोसाइटी ते खराब तो दिसो अल्लाह ताला इन मुल्क में पहाड़ आबशार रेगिस्तान हर शे दुनिया असा जो मुल्क खुशहाल मुल्क थी तो सके मगर असा में चाहे फेसबुक में हमेशा अनसर्टेनिटी दिखाण अनसर्टेनिटी दिखाण को बेहतर आ
1: तो केयरफुल रहन गुर्जे असा के बगैर की तस्दीक जे फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड न करण गुर्जे सर अगर असा इन ते अचो पीका एक्ट में इन जो भी जिक्र थे ला साइबर ब्लैकमेलिंग है के जो प्राइवेट कंटेंट जे को मिसयूज करण इन के थोड़ो तवा डिटेल सा बताइंदा
0: सर दिसो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन उनकी इज्जत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1947 में आर्टिकल 14 में वाजे आ कि केंजी ता इज्जत जकी आ मजरू नथा करे सको चार दीवारी जो एहतराम करनो आ हाने इन में पीका एक्ट में अचे तो डिग्निटी ऑफ पर्सन जो उन में पर्टिकुलर नालबिया सेक्शन आयन जे में डिग्निटी ऑफ पर्सन कॉम्प्रोमाइज करे थी अगर ता के फोटोज जा उन जे खिलाफ मिस इंफॉर्मेशन शेयर कर खबर आई मिस इंफॉर्मेशन शेयर करण से उनकी इज्जत से फर्क पवो इज्जत खराब थी मजबूत तो यो भी कानून जुर्म आ जिनकी 3 साल सजा है यो आ कि बिना परमिशन के तुम फोटो वी अपलोड था कर वीडियो यो सोशल मीडिया जो गलत इस्तेमाल हाँ बकौल
2: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
0: विक्टिम के तंग करण हरास करण हरासमेंट में साइबर बुलिंग भी
1: साइबर बुलिंग जी जी
0: साइबर स्टॉकिंग भी है केंजो पीछो करण अगर ताके वो मानू नथो पसंद करे जा का एडी गाल हो तासा राप्तो नथो रखण चाहे उन कड पण उने भी 3 साल सजा पीका एक्ट में आए साइबर स्टॉकिंग जी उन जो वाजे तरीके सा हरास करण में दिसो साइबर हरासमेंट में इन में पीका में उन जी लैंग्वेज के साइबर स्टॉकिंग चयो वयो आ
1: ओके
0: साइबर स्टॉकिंग में ता उन के इंटेंशन विद केड़े उन सा मोड सा अप्रोच सा के मोबाइल सा
1: इंटरनेट जे थ्रू जी हां डिजिटल दैट मीन डिजिटल यस
0: मानु चंदा साईं ता फिजिकली मुलाकात ना फिजिकली ता उनके ना अप्रोच के ता उनके अप्रोच ता के ऑनलाइन थ्रू मॉडर्न डिवाइस में ता स्मार्टफोन आईफोन पियो फोन्स एंड ई वे ऑफ कम्युनिकेशन
1: आई सर ये आजकल ये भी थे तो डिजिटल जे कह ना एआई वीडियोस क्रिएट कई पई वनन के न्यू पो उन जे थ्रू के ब्लैकमेल पियो कयो वने त ई भी साइबर स्टॉकिंग सॉरी साइबर बुलिंग में पियो छे
0: साइबर बुलिंग में अच्छे तो इन जे लाए फॉरेंसिक रंज लैब आ जकी एनसीसीआई उन के कंटेंट के पानी तहवील में वठती आ इन जो अगर हो स्क्रीनशॉट कडी करे उन कंप्लेन के पानी ऑनलाइन तादार जरूरी नहीं असा ट यो एको शुक्र आ के एकडी नई शय हु असा इन्वेंशन थियो ना आवाम जे लाए ता नथा अप्रोच करे सको एड़ो टाइम आ ता ऑनलाइन कंप्लेन करे ता सको असां वटि इलाही इदारा आहिनि जंहिंमें ऑनलाइन कंप्लेंट्स हलनि थियूं, चाहे वफ़ाकी मुंसिब आहे.
1: जी जी सर, हाणे त इलाही ऑनलाइन. जी हा जी हा जी हा.
0: ॾिसो डिजिटल पाकिस्तान इहो ई आहे, बसि फ़र्क़ु इहो आहे की माण्हू उन डिजिटल पाकिस्तान जो मिसयूस था कनि.
1: ओके,
0: पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज बाए वे ऑफ ईज़ी. तव्हां घर वेही करे पंहिंजी शयूं घुरायो था. हाणे फूड पांडा छा आहे, गर्मी में ॾिसो बाबर साहब, गर्मी में घर खां ॿाहिरि वञी करे काई शइ वठी अचणु, पर उहो छा आहे, फूड पांडा हिकु रजिस्टर्ड एप
1: आहे,
0: उनजो ऑनर आहे, उनजा हिकिड़ा क्रेडेंशियल जेके पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कयल आहिनि.
1: सो बिल्कुलु व्यूअर्स, प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जारी आहे ऐं अॼु जे असांजे प्रोग्राम में टॉपिक आहे साइबर क्राइम एज वेल एंड एडवोकेट बिलावल हुसैन बलोच साहिबु असांजे स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि. फ़िलहालु हलंदासीं असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं, असां सां गॾु रहिजो.
2: शहर अपना घर मीरपुर खास और मीरपुर खास की आवाज पाई जबरदस्त कनेक्टिविटी 5GB डेटा 10GB व्हाट्सएप 1000 जास मिनट्स और SMS और 60 दूसरे नेटवर्क मिनट्स वो भी सिर्फ 270 रुपए के लोड में विद जास 5G. अभी ऑफर हासिल करने के लिए *9277 हैश डायल करें. शराइत जवाबित लागू है. क्या आप ऊंचा सुनते हैं? क्या आप सितंबर 2026 बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ्री ऑडियोलॉजी कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें बरतानिया से पहले तरबियती याफ्ता कराची के माहिर कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट शाहिद अख्तर राजपूत डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज और नजहत शाहिद डाउ यूनिवर्सिटी कराची आपकी समाअत का मुकम्मल मुआयना और हेयरिंग एड के हवाले से रहनुमाई करेंगे. नौ मौलूद बच्चों के PERA और ASSR टेस्ट भी किए जाएंगे. यकम सितंबर से रजिस्ट्रेशन की जाएगी. तादाद महदूद है, इसलिए पेश की रजिस्ट्रेशन जरूरी है. याद रखें, बर वक्त समाज की जांच बेहतर गुफ्तगू, बेहतर तालीम और बेहतर जिंदगी की बुनियाद है. आवाज जिंदगी है, इसे खामोश होने ना दें. मन जानिब सोनो बोलो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पेच ट्रेनिंग सेंटर रोटरी क्लब ऑफ कराची एंड मीरपुर खास. रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर 03413429824.
3: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
4: सिंध का शहर खास
3: मीरपुर खास.
5: अवां चाहियो था त अवां जो पैगाम बियन ताईं पहुंचे. आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंध जीए मीरपुर खास FM 88 केतरन ही नंढन वॾन शहरन में ॿुधो वेंदो आहे. पब्लिसिटी जो बेहतरीन ज़रियो जीए मीरपुर खास FM 88. वधीक राब्ते लाइ मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 03227243010 ऐं 03333722071.
2: सिंध का हर चप्पम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: commercial break. Jazz Bemis. साल प्लस ऑफर से पाए दूसरे नेटवर्क मिनट्स वो भी सिर्फ 270 रुपए के लोड में विद जैज 5G. अभी ऑफर हासिल करने के लिए *9277# हैश डायल करें. शराइत और जवाबित लागू है.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार. इसीलिए सुपर सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाएं, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
2: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो.
3: हटो पीछे, भागो. अहमद, हटो.
2: सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: अपना शहर, अपना घर. खास और मी

0: बेसिकली ऑनलाइन फ्रॉड इहो के तव्हां सां असां काई कमिटमेंट कयूं था, तव्हांखे ॾेखारियूं था काई शइ, के सर ऑफर आहे हिन ते, का गाॾी आहे, का स्पेयर पार्ट्स आहिनि, का परफ्यूम आहे, का कपिड़नि जा जोड़ा आहिनि, इहे तव्हांखे असां ऑनलाइन ॾेखारे करे तव्हांखे चवंदो हाफ पेमेंट कयो, फुल न, हाफ पेमेंट
1: सही,
0: फुल विल बी डन ऑन कैश ऑन डिलीवरी,
1: कैश ऑन डिलीवरी जी आहे,
0: त पोइ उहो असां तव्हां खां पैसा वठी करे असां रिस्पोंड न कयूं, ऐं उहो तव्हां जेॾी महिल तहक़ीक कयो त उहो हुजे ई फ्रॉड, ऐं हुनजो को सिर पेरा ई कोन हुन शइ जो, त इहो हिकिड़ो ऑनलाइन फ्रॉड आहे। ऑनलाइन फ्रॉड में स्कीम्स बि तव्हांखे माण्हू चवंदा की साईं असां वटि स्कीम आहे, असां वटि हीअ स्कीम आहे या असां वटि उहा स्कीम
1: आहे, ऑफर्स
0: इन करे हूंदियूं सर, त उहो तव्हांजे माइंड खे कैच कंदा आहिनि की तव्हां किथे फासो, स्कैमर्स आहिनि न
1: सर। इन में तव्हां इहो बि ॾिठो हूंदो त असां यूट्यूब ते कुझु वीडियोस ॾिसूं पिया त विच में अहिड़ा एड्स पिया अची वञनि, पोइ हुन में इहे ऑनलाइन ऑफर्स बि ॾिनी वञनि, तव्हां हींअर ई जेको आहे त लॉग इन कयो, तव्हांखे 50,000 ताईं कर्ज़ो थो ॾिनो वञे, अहिड़ी तव्हां वीडियो ॾिठी हूंदियूं,
0: बिल्कुलु इन जा माण्हू शिकार थिया अथव, सखर जा कुझु माण्हू मूंखे यादि न, हुननि को अहिड़ी लिंक हुई की हाणे तव्हां हिन में रजिस्टर्ड थियो, हाणे जो हाणे अव्हांखे 15,000 मिलंदा, हुननि पंहिंजो हुन में NIC ॾिनो ऐं पंहिंजो एड्रेस वेड्रेस ॾिनो, ख़बर पई की हुननि जे ॿ टे हुननि जो पैसा अचण ई जाइ ते हुननि जे ई अकाउंट में जेकी ईज़ी पैसा में पैसा पिया उहे बि हलिया विया, त इन्हनि शयुनि खां माण्हू ॾिसो बाबर साहिबु सेंस नथो
1: थिए,
0: तव्हां काई हिकिड़ी वेबसाइट डाउनलोड कयो, हुन जा तव्हांखे पैसा मिला, सेंस कीअं वेबसाइट कीअं कमाए
1: ॾींदा, छा पिया करनि, ऑफर्स ॾेई पोइ जॾहिं हुते डेटा इनपुट कयूं पिया न पाण, पोइ उहे डाउन पई थी वञनि लिंक्स, मतिलबु हू पंहिंजो कमु करे पिया वठनि, असां खां जेको आहे न डेटा उहो कलेक्ट करे पिया वठनि। अच्छा, सेकेंडली सर, इन ते ऑनलाइन फ्रॉड ते कुझु जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त प्री पेमेंट करे पिया वठूं, पोइ ख़बर पई थिए बाबा भई फ्रॉड आहे, त इन जो जेको आहे त कहिड़ो जेको आहे त इम्पेक्ट थो पए, स्पेशली जेके ऑथेंटिक वेबसाइट्स आहिनि उतां माण्हू शॉपिंग करणु चाहींदा आहिनि, पोइ इन्हनि खे ॾिसी न करे सघंदा
0: आहिनि। कॉमन स्कैमर्स एॾा वधी वेंदा आहिनि ऐं तव्हांखे मुख़्तलिफ़ स्कीमियूं अकाउंट हैकिंग जे ज़रिए तव्हांखे फ्रॉड करे इन जो वॾे में वॾो नुक़सानु थिए थो, जेको रियल माण्हू आहे, जेके जीअं असांजी अगरि चइजे कोई बि ब्रांड कहिड़ा बि असां मल्टी नेशनल ब्रांड्स आहिनि, असांजे जूतनि जा बि ब्रांड्स आहिनि पाकिस्तान में, कपिड़नि जा बि हाणे माशाल्लाह ॾाढा ब्रांड्स
1: आहिनि,
0: सखर में ई असां मिल्ट्री रोड भरियो पियो, इन जो नुक़सान बिज़नेस जो नुक़सान उन्हनि ब्रांड्स खे थो थिए जेके इन जो माने निशानो था थियनि।
1: ओके,
0: अगरि मां सां को माण्हू फेक थी करे अचे थो की मां बुनेंजा जो ब्रांड यूज़ करे मां कयो थो करे, त मां रियल बुनेंजा जी वेबसाइट ते कॾहिं बि न वेंदमि,
1: इन करे
0: वरी खां मां चवां थो की थिंक बिफोर ओपनिंग एनी लिंक, ओपनिंग
1: मींस ऑथेंटिसिटी असां ॾिसी वठूं त वाकई ऑथेंटिक वेबसाइट आहे या न आहे,
0: ऐं जेतिरा बि ब्रांड्स आहिनि जी पंहिंजियूं वेबसाइट्स आहिनि, ऑनलाइन शॉपिंग्स बि आहिनि,
1: यस यस, उन्हनि जी ऑफिशियल वेबसाइट्स आहिनि उहे। अच्छा, इन में सर छा कंदा अथव त कुझु जेके लास्ट वारा डिजिट्स आहिनि जीअं फॉर एग्जाम्पल .com आहे त उनखे .cc था करे वठनि, पोइ इन मां माण्हू सुञाणे सघनि था त ही जेकी आहे न ऑथेंटिक वेबसाइट कोन्हे।
0: सर, इन जो हिकिड़ो सिंपल एग्ज़ाम्पल मां तव्हां
1: जी जी
0: अक्सर तव्हांखे मोबाइल में मैसेज आयो हूंदो तव्हांजा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसा, हाणे मूंखे ॿुधायो असां त कॾहिं अप्लाई न कयो आहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में,
1: नालो
0: आहे त हेतिरा पैसा जीतिया न, हाणे मूंखे हिकिड़ो फोन कॉल आई, मां कोर्ट ते वञा पोइ, असांजे माण्हुनि खे बि थोरो सोचणु खपे, हे स्कैमर्स जेके अथव उन टाइम ते तव्हांखे कॉल कंदा आहिनि, हिननि खे एॾो हिननि जो ॾिसो न, हे ब्रिलियंट, दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स ऑफ द
1: डिजिटलाइज़ेशन,
0: उहो तव्हांखे उन्हनि टाइमनि ते कॉल कंदा, या त तव्हां गाॾी हलाईंदा हूंदो, या त तव्हां ऑफिस में हूंदो, या त कंहिंखे छॾणु वेंदा हूंदो, उन टाइम में तव्हांखे फोन करे तव्हां खां आइडेंटिटी घुरंदा, तव्हां खां तव्हांजो OTP घुरंदा, ऐं माण्हू हरीड एंड बरीड वारे सिचुएशन में इहे शयूं कॉम्प्रोमाइज़ था कनि, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ कंदो तव्हांजी आइडेंटिटी हली वेंदी।
1: सही पिया चओ, इनखे जेको आहे तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त जेके फ्रॉड कंदड़ आहिनि इहे माण्हुनि खे ईअं धोखो ॾियनि पिया, पोइ इन टाइम ते कीअं माण्हुनि खे मोहतात रहणु घुरिजे?
0: सर, इहे माण्हू तव्हांखे ऑफर्स ॾींदा आहिनि, पर हिननि जो बेसिकली इशू इहो हूंदो आहे तेसिताईं तव्हांजी डेटा ऑप्टेन नथा करे सघनि जेसिताईं OTP तव्हां शेयर नथा कयो।
1: ओके,
0: त OTP आहे वंस टाइम पासवर्ड, उहो कॾहिं बि कंहिंसां बि शेयर
1: न कयूं, शेयर
0: पिन आहे, NIC आहे, कॾहिं बि शेयर न कयो, तव्हांजी इहे कंडेंशियल डबल लॉक्स हूंदा आहिनि, ॿिया ट्राइंगल सॼियूं शयूं तव्हांखे पाण वटि ताईं रखणियूं आहिनि। कोई बि घुरे तव्हांखे अक्सर कोरियर सर्विस वारा बैंकिंग तव्हांजो अकाउंट, हाणे मूंखे हिकु दफ़ो फोन आई की साईं असां स्टेट बैंक मां था ॻाल्हायूं, तव्हांजे अकाउंट जी हिकिड़ी हिकिड़ी ट्रांज़ेक्शन थी आहे मशकूक
1: आहे,
0: तव्हां अचो, असां तव्हांजो मामा बाबा कोर्ट में आहे, अची सघ तव्हां सां अची नथा सघो त असांखे तव्हां पंहिंजो बैंक जो पिन ॿुधायो, चार डिजिट सां। मां चयो मां त नथो ॿुधाए सघां, कंप्रोमाइज़ थी वेंदो, साईं असां तव्हांजो अकाउंट उहो था कयूं, ब्लॉक था कयूं। हाणे इहो छा आहे माण्हू जे दिमाग़ में पैनिक क्रिएट करणु, वरी मुख़्तलिफ़ इदारनि जा नाला खणण के असां हिन इदारनि मां पैनिक माण्हू जे दिमाग़ में जॾहिं पैनिक क्रिएट थींदो आहे माण्हू पंहिंजे हार
1: मञी
0: कंप्रोमाइज़, बाबर साहब कंप्रोमाइज़ न आहे करिणो, कंप्रोमाइज़ तव्हां कंदो तव्हांजो सॼो डेटा हली वेंदो ऐं उहो अल्टीमेटली तव्हांखे नुक़सानु आहे। मां हुनखे चयुमि बाबा तव्हां ब्लॉक करे छॾियो, चई साईं असां एफ आई ए में आहियूं, ब्लॉक कंदासीं, मां अचां थो विज़िट करण थो
1: अचां,
0: अदर मुंहिंजो पाण नंबर बंदि कयो आहे, मां कॉल करण कोशिशि कयमि त उहो नंबर ई नथो लॻे।
1: इहो
0: हिकिड़ो इशू हूंदो आहे की जस्ट दे केन कॉल अस, असां हुन नंबरनि ते कॉल नथा कयूं, छो करे मालवेयर हिकिड़ो सॉफ्टवेयर यूस कंदा
1: आहिनि,
0: उहो तव्हांखे फोन करे तव्हां खां डेटा वठी था सघनि, तव्हां हुनखे फोन नथा करे सघो।
1: ओके, ऐं सर जीअं डेटा ते ॻाल्हि आई तव्हां चयो त को बि पिनकोड असांखे शेयर न करणु घुरिजे एज़ वेल, ऐं हीउ जेको स्पूफिंग थिए पई व्हाट्सएप अकाउंट जेके हैक थियनि पिया, त इन ते तव्हां इहा सजेशन ॾींदव त मिसाल को मैसेज अचे पियो कंहिं बि ऑथेंटिक नंबर तव्हां खां, छाकाणि त असांजा दोस्तनि जा अगरि अकाउंट हैक पिया थी वञनि, उन्हनि खां मैसेज आयो असां त इहो सम्झंदासीं उन्हनि मैसेज मोकिलियो आहे, त असां उन्हनि खे इहो चई सघूं था यार वॉइस नोट खणी मोकिल, त वॉइस नोट त मां सम्झा थो इहे न करे सघंदा हूंदा जेके फ्रॉडुलेंट आहिनि,
0: उन्हनि खे चओ तव्हां वॉइस नोट करे मोकिलियो, जा तव्हां कॉल कयो हो कॉल खणंदो न,
1: कॉल न खणंदा एग्जैक्टली,
0: अगरि तव्हां खां को दोस्त खोले थो प्री प्यारो तव्हां हुजत थो करे, हुजाइते दोस्त में तव्हांजी एतिरी हुजत हुजणु खपे, तव्हां फोन कयो बाबा मां अची थो वञा पाण, जेको हाल आहे
1: मैं अभी कॉल पे बात नहीं कर सकती। सो बिल्कुलु व्यूअर्स, तव्हांखे जेको आहे त मुहतात रहणु घुरिजे, एडवोकेट बिलावल हुसैन बलोच साहिबु तमामु सुठा अव्हांखे जेके आहिनि त मशवरा ॾेई रहिया आहिनि, जेके अव्हांजे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि, ऐं साइबर क्राइम खे जेको आहे त ईअं ई रोके सघिजे थो जेसिताणी असां केयरफुल रहूं ऐं पंहिंजो डेटा जेको आहे स्पेशली उहो करे ॾियूं। सर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त अॼुकल्ह व्हाट्सअप ते जेको आहे न सी एन आई सी जी कॉपीज़ असां शेयर करे छॾींदा आहियूं, ऐं इन जो मिसयूज़ थिए पियो, इनखे कीअं पिया ॾिसो ऐं इन ते तव्हां छा असांजे व्यूअर्स खे सलाह ॾींदव?
0: सर इन ॻाल्हि में हिकिड़ो क्रेडिट असां गवर्नमेंट खे ॾियूं की असांजो जेको बि हाणे ट्रांज़ेक्शन मोड आहे उहो जेसिताईं बायोमेट्रिक नथी थिए नथो थिए।
1: ओके,
0: न त पहिरों तव्हांजे एन आई सी ते मां तव्हांजे एन आई सी ते रजिस्ट्रेशन बि कराए पियो सघां, तव्हांजे एन आई सी सां मां गाॾी बि रजिस्टर कराए पियो सघां। हाणे तव्हां ॾिसो छॾो जेको एक्साइज डिपार्टमेंट आहे सिंध जो, मूं वटि अगरि गाॾी आहे मां तव्हां सां तेसि ताईं ट्रांसफर नथो करे सघां जेसिताईं मां बायोमेट्रिक नथो
1: करां,
0: जेसिताईं
1: बायर
0: नथा कयो। सो दिस दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पॉलिसीज थ्रू विच दिस सी एन आई सी कैन बी not used for any fraudulent.
1: All right. Matlab send kare ta sagan si na si. It's okay, okay. So short commercial break da halon pya podcast legal corner mein asan sa gat rahe jo.

0: सो बिल्कुल व्यूअर्स, प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में बाबर शेख हवा सा गड है, एडवोकेट बिलावल हुसैन बलोच साहब गड है, असो टॉपिक है साइबर क्राइम है। टॉपिक से गडोग प्रोग्राम जो वक्त भी तकरीबन पैंती पुराणी से पहुंची चुको है। इन लास्ट 5 मिनट्स में मैं कोशिश क्या पे कॉल्स अटेंड किया, माजरत सा मुझे कॉल्स और सेगमेंट जहन में ही न रो बिलावल साहब से डिस्कशन अड़ी हल पी जो ध्यान ही न हो कॉल की तरफ। माजरत खाया तुम कॉल्स प्रोग्राम में शामिल क्या पे। लेट्स सी लाइन से केर है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ऑल राइट, कॉल ड्रॉप थी चुकी है। सो सिग्नल जो इशू होंगे इन लाइन असा थोड़ा टॉपिक के कंक्लूड कंदी। बिलावल साहब, साइबर क्राइम से असा गल तमाम सुठी तुम इंफॉर्मेशन असा शेयर कई, एज वेल एज ऑनलाइन फ्रॉड से भी पा गल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगल रेमेडीज फॉर एग्रीव्ड पर्सन। कड़ी लीगल रेमेडीज हैं अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन आए कैंसा ऑनलाइन फ्रॉड थे पो, स्पूफिंग जो शिकार थे पो, एज वेल एज तमाम घना तुम जी बुधाया टर्म्स, लीगल टर्म्स उनके लिए कड़ी लीगल रेमेडीज मौजूद हैं इन पीका एक्ट में।
1: सर, डिजिटल क्राइम के लिए एक इदारो जो पे FIA साइबर विंग हो कन्वर्ट थी NCCI में, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
0: सही,
1: उन में यो आ के अवां वनी सगो ता बाय हैंड अगर का कंप्लेन करनी आ ता समझो ता ता फ्रॉड थियो आ ता उन पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ऑनलाइन कंप्लेन कियो ता ता उन में अवां जो नालो पर्सनल पूरो नालो ता जी NIC जो नंबर मोबाइल नंबर आए ता सा जेको फ्रॉड थियो आ उन जो अगर स्क्रीनशॉट कडी सगो ता ता वो भी उन सा शेयर करना जरूरी है। पो अक्यूज जी डिटेल अगर नॉन ना है ता छोड़ो अक्यूज सस्पेक्ट जो वो व्हाट्सएप नंबर वो लिंक जे जरिए सा को फ्रॉड किया इजी पैसा अकाउंट में पैसा घुराया तई तो वो भी शे
0: वो सब एविडेंसेस जे कंट जी
1: एंड पो इन एन एविडेंस जो क्लियर फॉरेंसिक हो करे अवां जी उन कंप्लेंट के एंटरटेन कंदा अवां के घुराइंदा कोशिश कंदा छोकरे हन के एकड़ो सर्वर एक्सेस आए वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जे भी उन लिंक्डइन
0: जी जी
1: तांजे इनसान नादरा सां भी लिंक्डइन आए बैंकिंग सेक्टर सां भी लिंक्डइन ओ बैंकिंग जे ऑफिसर के करे रोके करे तां जी के भी बैंक सां गड ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड थियो आ वो स्टेट बैंक के चई करे हो न के फर्दर बे हंद ट्रांजैक्शन के रोकराय भी सकन था।
0: ओके,
1: पर इन जे लाए तां के देन एंड देयर ऑनलाइन का अगर रात था तो ऑनलाइन कंप्लेन अगर डे ता फ्रीक्वेंटली विजिट कयो आए कंप्लेन दे सके।
0: मतलब ऑनलाइन सा गरो ता चो ता विजिट कियो तो बेहतर है,
1: पॉसिबल है तो बेहतर है सर,
0: न तो ऑनलाइन कंप्लेन कर सके। ऑनलाइन कंप्लेन
1: रिकॉर्डिंग
0: भी रखा पा स्क्रीनशॉट्स एंड एज वेल ट्रांसैक्शन जी जेका आहे हिस्ट्री वगैरह वो असां रखूं पाण वटि
1: बिना के नॉन मानू था उनके का ट्रांजैक्शन करने जी जरूरत ता के आ ही कोना। अगर एड़ो को मानू आए ता बिलीव ता क्यों आए त उन जे अकाउंट के वेरीफाई कयो। सो हाने बैंकिंग सेक्टर में असन जी ऑनलाइन बैंकिंग आ तेस तई हो उनके पैसा ट्रांसफर न कंदे जेस तई उन अकाउंट जो नालो न थो छे। जी हाने ता जी के ट्रांसफर कंदो उन जो स्क्रीनशॉट ता दिसे।
0: यस यस यस,
1: यो भी को असन डिजिटल एविडेंस आ जो को असन सेव करे।
0: ओके सर, सो सर प्रोग्राम जो वक्त पुजानी ते पहुंच चुको है। लास्ट में ता असानी व्यूअर्स के स्पेशली केड़ियों जेके अंत मशवरा दींदा केड़ी सलाह दींदा तो जी ऑनलाइन फ्रॉड का बचन, स्पेशली जेके ग्रीडी पीपल हैं जेके लालच में अची करे ये मानू ने पैसा मोकले पे छन पो तमाम घना परेशान थींदा हैं तो असा पैसा मोकले छड़ियासे छाकाण त ये जेके आहिन मानू ठग टाइप जेके मानू लालच देई करे जेको आने फ्रॉड कन पिया उनन के केड़ा मशवरा तमा देन चाहिए।
1: बाबर साहब, लास्ट में मां यूं ही चवंदम के जेतरो थी सके मोबाइल सा मानू जेतरो इंटरनेट कनेक्टेड आ सुबह उठण को वटी वेंद राज सुमण ताई असन जो इक्विपमेंट गन
0: मोबाइल आई आए
1: उन ते रिलाय करे तो मगर उन ते रिलाय एतरो करे के जेतरो मानू पाण के पाण धोको न दे।
0: ओके,
1: असा एकडी फेक आइडेंटिटी सा असा न के जो मुंह ता दिसू न उन के फिजिकली दिसू ता। कानून भी यो चे तो के पेरो ता वेरीफाई कयो, लॉज में भी यो या वेरीफाई कयो, असा बिना डिठे अंधा सो
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
3: وزیر اعظم شہباز شریف پیمز تانے جی جانچ کندڑ کمیٹی جی شروعاتی رپورٹ تے اہم ہدایتوں جاری کرے چھڈیوں ذمہ وار قرار ڈنل ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت اٹھ آفیسرن کے معطل کرن جو حکم دے چھڈیو عملدارن فوجداری قانون تحت بے کاروائی جو حکم جانچ رپورٹ میں عوام لائے پبلک کرن جی ہدایت اے ڈی پیمز ڈاکٹر عمران سکندر متاہر شاہ ڈاکٹر اویس علی شاہ ڈاکٹر سعدیہ ریاض سینئر رجسٹرار ڈاکٹر نوشینہ امجد اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیم سیکورٹی محمد عثمان ڈی جی ایمرجنسی سروس سی ڈی اے ڈاکٹر عبد الرحمان کے بھی عہدے تاں ہٹایا ویو جانچ رپورٹ میں ذمہ وار قرار ڈنل آفیسرن خلاف فوجداری کاروائی تھی

शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा सारे रिपोर्ट
1: सर, के आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे?
0: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है।
1: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है? आपने रिजाइन कर
0: वो रिपोर्ट आ जाएगी सब क्लियर हो जाएगा।
2: मुझे इस्तीफ़ा बाबत वजीर आज़म का पुछो वे सेहत व वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो कयो। तारिक फजल चौधरी चयो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट में सामू ईंदड़ खिलाफ़ कार्रवाई थी। पीपल्स पार्टी पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट पदरी करण जो मुतालबो कर छोड़ो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहे पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवे शाह खान चयो तो सभी जो गठजोड़ है। शफाफ जांच किनी थी लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरायो वो वन ऑफिसर के कुछ नो थाने जो शायदू मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के टन साल दौरान 22 अरब मिलया पैसा किथे लगा कि खर्च थे ऑडिट कराई वे।
3: सर्विस डिलीवरी भाई, क्या सर्विस डिलीवरी हुई? कहां थे ये तमाम लोग? ये तो फिक्स होगा और ये फिक्स होगा तो बाकी गुफ्तगू होगी। इसे फिक्स किए बगैर अब कोई गुफ्तगू नहीं।
2: वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामियों जो एतराफ़। मुल्की निज़ाम के बेबिटे मयार वारो करार दे छोड़ो। तकरीब के खिताब कदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज कराने नथा वन न ही कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूलन में पढ़न था। इन फर्क के खात्मे ताई निज़ाम ठीक न थींदो।
4: ये सही ये इल्तफा इस वजह से है कि भाई सब इसमें आकर बोले। ये इल्तफा के बाद जाहिर है तो बहस ऐसा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
5: सो बहस असा इन कर चाहू था तो हर सिंध जो मानू जो है इन मामले से गालो अहम मामलो है। अस चाहूँ था सिंध जहा मानू बुझन अस टेक्निकली तौर से असि मंडे को वी वही इन रेजोल्यूशन की पास कंदे।
2: पीपुल्स पार्टी पारा नवन सूबन ए यूनिटन ते बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रिथ जो दिफा ऐवान में विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह तो सिंध असेंबली पहरी भी 6 भेरा ठहराव पास कर चुकी है। रिथ आणन जो मकसद भी मामले से गलायण है। मोहम्मद अली मलकानी चयो तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौकिफ पेश करण है। सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव भी पास किया वो।

घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यान तरक्कीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त व्याज जी शरह बि 22% मां घटि थी 11% थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाधि थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदारु हासिल करे चुको आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो, जदीद हथियारनि जी ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल खे इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि, ऑपरेशन्स ऐं मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जी टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो अज़म वरचायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA जो दहशतगर्दीअ वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सिस आपघाती हमले लाइ तयारु कयल नंढी उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निगरनि जा पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर दयाल लांगो चयो त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तमु करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो। निगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कारवायूं जारी आहिनि।

0: वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे सेफी अस्पताल में कॉर्डिक विंग जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तकरीब में नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बि शरीक थियो। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त कराची रोशनियुनि, उमेद ऐं सलाहियतुनि जो शहर आहे। मुआशी इस्तेहकाम जो समर बि अवाम ताईं पहुचायो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सेफी इस्पताल जो दिलि वारो वार्ड सिंध समेत समूरे मुल्क जे मरीज़नि खे लाभ ॾींदो। बोहरी बिरादरीअ जूं फिलाही ख़िदमतूं साराह जोगियूं आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराचीअ जो दौरो। जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। घरू वज़ीर इमिग्रेशन काउंटर्स ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादल इंतज़ाम हुजणु घुरिजे, इमिग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुरिजे। आई वर्क फॉर सिंध सिंध जे नौजवाननि लाइ हिकु मुकमल डिजिटल केरियर इकोसिस्टम बणिजी चुको आहे, जिते नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा, जदीद कोर्स ऐं मुख़्तलिफ़ सहूलियतूं फराहम कयूं पियूं वञनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त आई वर्क फॉर सिंध ते हेल ताईं 4,45,000 खां वधीक नौकरियुनि जूं दरख़्वास्तूं गॾु कयूं वियूं आहिनि। सिंध हुकूमत जो मक़सदु नौजवाननि खे रुॻो नौकरी ॻोल्हींदड़ न पर नौकरीअ लाइ तयारु करणु आहे।
1: पांच साल की बच्ची उसके साथ दूसरा प्यार किया
2: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल लाल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
2: GFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: पीपल्स पार्टी पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट पदरी करने जो मुतालबो कर छोड़ो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहे पीपल्स पार्टी के सीनेटर बलवशाह खान तो सभी जो गठ जोड़ है। शफाफ जांच किंती लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वन ऑफिसर के कुछ नाने जो शायद मिटाने की कोशिश की रही है। पिम्स के टन साल दौरान 22 अरब मिलिया पैसा किथे लगा कि खर्च थे ऑडिट कराई वे।
1: आपको हैरत नहीं हुई कि एक डॉक्टर की उंगली नहीं कटी, कोई नर्स जख्मी नहीं हुई, कोई फायरमैन को आग नहीं लगी और 14 बच्चे जल के राख हो गए? क्या सर्विस डिलीवरी भाई, क्या सर्विस डिलीवरी हुई? कहां थे ये तमाम लोग? ये तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स अब होगा और ये फिक्स होगा तो बाकी गुफ्तगू होगी। इसे फिक्स किए बगैर अब कोई गुफ्तगू नहीं।
0: वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामिन जो एतराफ़, मुल्की निज़ाम के भी मिटे मयार वारो करार दे छो। तकरीब के खिताब कदे मुसद्दिक मलिक कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज करण नथा वन नहीं कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूल में पढ़न था। इन फर्क के खात्मे ताई निज़ाम ठीक न थींदो।
2: ये तहरीके इल्तफा इस वजह से है कि भाई सब इसमें आकर बोले। ये इल्तफा के बाद जाहिर है तो बहस ऐसा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
3: सो बहस अस इन कर चाहूं था तो हर सिंध जो मानू जो है इन मामले से गलो अहम मामलो है। अस चाहूं था सिंध जहा मानू बुधन उनके अस टेक्निकली तौर पर असि मंडे को वी वही इन रेजोल्यूशन की पास कंदे।
0: पीपल्स पार्टी पारा नवन सूबन यूनिट्स से बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रिथ जो दिफा हैवान में विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर शाह तो सिंध असेंबली पे बेच छह बेरा ठहराव पास कर चुकी है। रिथ आणन जो मकसद भी मामले से गाल है। मोहम्मद अली मलकानी तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौके पेश करना है। सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव भी पास कर।

मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि 30 सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो त व्याज जी शरह बि 22 सैकड़ो मां घटि थी 11 सैकड़ो थी वई। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाधि थी आहे। ख़िते में बि पाकिस्तान अहम किरदारु हासिलु करे चुको आहे।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरों जदीद हथियारों की ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो। आईएसपीआर मौजिब फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन से मकामी सतह से तैयार थींदड़ जदीद हथियारों बाबत ब्रीफिंग दिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियारों की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में बाण भरो थियण मकामी पैदावारी सलाहियतों ने टेक्निक में जिदत जो अज़म बरचायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तनसीम बीएलए जो दहशतगर्दी वो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज आपघाती हमले लाए तैयार कल नंढे उम्र की बिन छोकर के गिरफ्तार कर वरतो। निगरन जहा पाबंदी मड़ियल तनसीम बीएलए बाबत छिड़कड़ इंकशाफ। बलोचिस्तान के घरू वजीर ज़ियाल लांगो तो दहशतगर्द बलोच रवायतों के खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दन 16 साल की ज़ैनब ए 12 साल की फातिमा के वर्कलाय। निगरन जहा वालदीन भी हैरान हैं। ज़ैनब के मुड़स के दहशतगर्दन मारे इल्ज़ाम फोर्सेज से लगाया। फोर्सेस जो दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी है। दहशतगर्दन के खत्म कर वे वजीर मुराद अली शाह कराची के सैफी अस्पताल में कॉर्डिक विंग जो इफ्तिताह कर छोड़ो। तकरीब में नाने वो वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब भी शरीक थो। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब चो तो कराची रोशनियन उमेद ए सलाहियतों जो शहर है। मौशी इस्तेहकाम जो समर भी अवाम से पहुंचाया वो। वे वजीर मुराद अली शाह तो सैफी अस्पताल जो दिलवर वार्ड सिंध समेत समूरे मुल्क के मरीजन के लाभ दी। बोरी बिरादरी जो फिलहाल खिदमतों सराह जोगियो।

टोल प्लाज़ा इंतज़ामिया ॼाण हूंदे बि नुक़्स ख़तमु न कया। इमारत ख़तरनाक ऐं फायर सेफ्टी कानून जी भञ कड़ी वारी हालति में वापारी इस्तेमाल में रही। इमारत में स्पीकर सिस्टम मौजूदु हुजण बावजूदु इस्तेमालु न कयो वियो। सिविल डिफेंस जी रिपोर्ट में इमारत अंदरि फाटी रस्तनि जे खामियुनि जी निशानदेही कई वई। बाह लॻण वक़्तु अक्सर रस्ता बंदि या रुकावटुनि सबबु मुतासिर हुआ। सिंध जे घरू खाते गुल प्लाज़ा साने बाबति रिपोर्ट पधरी करे छॾी। अदालती कमीशन पंहिंजी रिपोर्ट में दुरनि जे ज़िमेवारनि जो तइन कयो। रिपोर्ट मूजिबि बाह जो इतलाउ फायर ब्रिगेड खे ॾियण में इंतिहाई गैर दानिशमंदाणी देरि कई वई। बिजली बंदि थियण सबबु माण्हुनि जे ॿाहिरि निकिरण जा इम्कान वधीक घटिजी विया।

औरन जे रूहानी पेशवा पीर सैयद सबतुल्ला शाह राशिदी पीर पागारे जमात के न्याणियुनि जी मर्ज़ी जे बिना शादी करण खां रोके छॾियो। नंढे जमात में न्याणियुनि जी शादी न करण जो बि हुकुम। तलाक याफ्ता औरतुनि जी ॿी शादी आॾो रंडक न बणजण जी हिदायत। पीर सैयद सबतुल्ला शाह राशिदी पीर पागारे चयो आहे त कुझु ख़ानदान धीअरनि जी मर्ज़ीअ खां सवाइ ज़ोरी शादी कराइनि था, जेको सिलसिलो बंदि थियणु घुरिजे। न्याणीअ जी शादी मर्ज़ी पुछी ख़ानदान या ख़ानदान खां ॿाहिरि बि करे सघिजे थी। औरत खे माउ पीउ ऐं मुड़ुस जी मिल्कियत मां बि शरई हिसो ॾिनो वञे। मिल्कियत बचाइण लाइ न्याणियुनि जी शादी न कराइण वारो सिलसिलो बि ख़तमु कयो वञे। मुड़ुसनि जे ज़ुल्मनि जो शिकार औरतुनि सां बि शरई ऐं कानून मूजिबि हक़ ॾेई इंसाफ़ कयो वञे। हथ बंदि थियण बि औरतुनि जी शादीअ में रुकावट न बणजणु घुरिजे। न्याणियुनि जी शादीअ लाइ हथ बंदि वारो सिलसिलो 8 ॾींहनि लाइ दरख़्वास्त ते मुअतल कयो वञे। मलीर में एजुकेशन सिटी जे नाले ते ज़मीननि जी वालार ख़िलाफ़ मक़ामी ॻोठाणनि ऐं क़ौमपरस्तनि जो एहतजाज। लिंक रोड ते धरणो। क़दीमी ॻोठनि, ज़मीननि ऐं क़ब्रिस्तान तां कब्ज़ा ख़तमु करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरीन चयो त मलीर जी क़दीमी आबादीअ खे ज़मीननि तां बेदख़ल करण वारो सिलसिलो बंदि कयो वञे। शाहपुर जहानिया भरिसां मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सां पीउ ॿिनि धीअरुनि समेत फौत। ॻोठ बंगुल बुर्दीअ में सिकंदर बुर्दी, संदसि धीउ फरज़ाना ऐं अरफाता मुबैना तौर ज़हरीलो हलवो खाइण सबबु फौत थियूं। वारसनि पारां हलवे में ज़हरीली शइ किरण जो ख़दशो ज़ाहिरु।

सिचुएशन, ये मेरी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ये पूरी मेरी आँख के पास ऐसा है, ये सारी चीजें हैं, ये मेरे मुंह से सारा खून निकल रहा है, ये सारी चीजें इन्होंने की हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।